0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो ले।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: ए रूह मोहम्मद, शिराजा हुआ मिल्लत मर

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: अपना शहर मठियारी और आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: brought to you by
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
7: दिफा वाले वजीर ख्वाजा आसिफ चयो आए त अमेरिका ईरान माहदे जे वेझो पहुंची चुका आहिनि। का थींदड़ अगबराई सुठन खबरन तरफ वञी रही आहे।

पेट्रोल शयुनि जे अघनि में हिकु ॾींहं लाइ फेरफार। पेट्रोल 1 रुपयो 70 पैसा सस्तो ऐं डीज़ल 1 रुपयो 39 पैसा फी लीटर महांगो थी वियो। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल जी नई क़ीमत 325 रुपया 92 पैसा फी लीटर मुक़ररु। डीज़ल जी थी वई। पेट्रोल सिर्फ़ 1 ॾींहं लाइ मुक़ररु कया विया।

0: सिंध में पहिरियां बि नवनि सूबनि खे रद्द करे चुकी आहे। ज़रूरत पई त सिंध असेंबली मां वधीक ठहराउ बि पास कयो वेंदो। असांखे केरु रोकण वारो न आहे। सिंध जे अवाम खे पीपुल्स पार्टी ते मुकमल भरोसो आहे। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी कराची में आर्ट काउंसिल में ॻाल्हि ॿोल। मुराद अली शाह चयो त मरियम नवाज़ खे मुखातिब थींदे सदन वधीक चयो त नवाज खे सिंध में सियासत जो शौक़ु आहे त सिंध अची सियासत करे, वोटर लिस्ट में पंहिंजो नालो शामिल कराए ऐं इलेक्शन विड़े। मीर रज़ा जे मामले में पुलिस जूं कोताहियूं आहिनि, पर आउं हुन बाबति कुझु नथो चवां। मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे त केस जी जांच सही तरीक़े सां थिए। प्रिया कुमारीअ बाबति जे बारे में का ॼाण हुजे हा त अॼु ई खेसि बाज़ियाब कराए वठूं हा। प्रिया समेत गुम थियल समूरा ॿार
1: नेशनल स्ट्रेटेजी आमिर रज़ा खे निशाने सां नवाज़ करीब में
0: पेश।
1: पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जो 15 अगस्त खां पंप्स बंदि करण जो ऐलान। समूरे मुल्क में पेट्रोल पंप 15 अगस्त सुबुह 6 वॻे खां अणॼातल मुदे ताईं बंदि रहंदा। अॻवाण जो चवण आहे त असांजो सबुर जवाब ॾेई वियो आहे। हुकूमत 2 हफ़्तनि दौरान हिकु भेरो बि राब्तो न आहे कयो। मुतालबनि जी मञता ताईं पेट्रोल पंप्स बंदि रहंदा।
0: गुड्स ट्रांसपोर्ट जो वफ़ाकी वज़ीर अलीम ख़ान सां इस्लामाबाद में ॻाल्हियूं कामयाब। तय थियल मुआदे खे हतमी शकल ॾिनी वई। अलीम ख़ान ट्रांसपोर्टर्स खे वेट स्टेशननि बाबति बि मसइला हल करण जी ख़ातिरी कराई। ज़रियनि मूजिबि हुकूमत 7 खां 15 ॾींहनि ताईं पेट्रोल जा अघ न वधाइण ऐं साल ताईं टाल टैक्स में वाध न करण जी ट्रांसपोर्टरनि खे ख़ातिरी कराई आहे। आल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट ग्रेड अलायंस बि कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे फीथा रोक हड़ताल जी मुखालफत करे छॾी।
1: रावलपिंडी जे माल रोड ते

सिक्योरिटी फोर्सिस मथां फायरिंग कंदड़ हथियारबंद जवाबी फायरिंग में मारिजी वियो। फायरिंग जी ॾेवट में हिकु जवान बि ज़ख़्मी। रावलपिंडी पुलिस मूजिब मारिजी वियल हथियारबंद जो वास्तो हिकु मख़सूस सियासी जमायत सां आहे। दहशतगर्द जे कब्ज़े मां हथ आयल मोबाइल फोन ऐं ॿिए सामान मां वधीक शायदियूं साम्हूं ईंदियूं। वफ़ाकी वज़ीर अताताड़ चयो आहे त पीटीआई सदाई तशद जी सियासत कई आहे। माल रोड ते बि पीटीआई कारकुननि ॾींहुं ॾिठे फोर्सिस मथां फायरिंग कई।

0: सिंध हुकूमत जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे बर्थिन ऐं इम्तिहानी निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुतारिफ़ कराइण जो फ़ैसिलो। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह जी सदारत हेठि इजलास में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे चेयरमैन, आईटी सेक्रेटरी ऐं ॿियनि जी शिरकत। चीफ सेक्रेटरी चयो त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जे मदद सां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे इम्तिहानी अमल खे वधीक सराहतो बणायो वेंदो। परचा तयार करण ऐं असेसमेंट लाइ जदीद टेक्नोलॉजीअ खां फ़ाइदो वरितो वेंदो। इम्तिहानी निज़ाम जे कुझु मरहलनि में गैर ज़रूरी इंसानी मुदाख़लत घटाइण लाइ एआई इस्तेमाल कई वेंदी। आईए जे इस्तेमाल बाफ़ापियत ऐं इंसाफ़ जा उसूल बरक़रार रखिया वेंदा।
1: सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट जे मुबैन अलातार ख़िलाफ़ मुतासिर उमेदवारनि जे एतिजाजी कैंप उणिवीह ॾींहं बि जारी। सिंध स्टूडेंट एक्शन कमेटी SPSC समेत इम्तिहानी निज़ाम 12 नुक़्तनि ते

0: अगस्त सेंट्रल जेल में कैदी अमजद कोराई के फरार थियण वाले वाक्य की इंक्वायरी रिपोर्ट पदरी थियण बाद डिप्टी जेल सुप्रिंटेंडेंट समेत पंज अहलकार के सजा। एएसआई टे पुलिस अहलकार बरतरफ। जेल सुप्रिंटेंडेंट समेत टिन अहलकार पंज साल इंक्रीमेंट खत्म। डिप्टी जेल सुप्रिंटेंडेंट आसिफ कोराई असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट महदी रजा वसी रिटायर। जडे तरन में एएसआई अतार मलण पुलिस कांस्टेबल कमाल दीन चाचर सुधीर मलण ईमान अली मेतलो शामिल।
1: मलेर में ट्रैफिक पुलिस अहलकार निगरी के अगवा कोशिश नाकाम बढ़ाए छी। निगरी के अगवा करे गाड़ी में खड़ी वेंदड़ जवाबदार सोगो पोर्ट कासिम जोरंगी जे सेक्शन ट्रैफिक पुलिस निगरी आलिया जे रड़ियों ते गाड़ी के रोके खेस बाजियाब कराए जवाबदार फरीद असलम के सोगो करे वरतो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
5: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
6: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: नेटवर्क हिंट्स RDF पारां पेश कयो वयो आहे। छा अवां अच्छन वारन खां परेशान आयो? पेश आहे आर्च क्रीम हेयर कलर। पंहिंजे पसंदीदा रंग सां पंहिंजो अंदाज़ बणायो वधीक दिलकश ऐं वधीक स्टाइलिश। पार्टी हुजे, ऑफिस हुजे या कंहिं ख़ासि मौके जी तयारी, हर लम्हे पंहिंजो बहितरीन अंदाज़ ज़ाहिर करियो आर्च क्रीम हेयर कलर सां। पंहिंजी शख़्सियत में आणियो

दर्द जो पंध निमिरी न निमिरियो कॾहिं। दर्द जो पंध निमिरी न निमिरियो कॾहिं, सुख त भुलिजी बि दिलि मां न गुज़रियो कॾहिं। साहु अंगरनि जीअं आहे ॿरंदो रहियो, अंदर आवी रहियो ही न ठरियो कॾहिं। दर्द जो पंध निमिरी न निमिरियो कॾहिं, सुख त भुलिजी बि दिलि मां न गुज़रियो कॾहिं। السلام علیکم سامعین، جی ایف ایم 88.8 لاڑکانے جی لائیو اسٹوڈیو میں پروگرام روشن صبح سان کرے اواں جو پہنجو میزبان نعمت اللہ جونے جو اواں جی خدمت میں حاضر ایں قبر سلام۔ جی سامعین، کیڑا لنا وجا خوش آیو، ٹھیک آیو، چاک چنگا بھلا۔ اساں جی ہر پل ہمیشہ اواں پیارن سجنن لائے یہ دعا ہوندی ہے त जिते बि हुजो ख़ुशि हुजो, कॾहिं ॾुखियो ॾींहुं ॾिसो ऐं सदाई गुलाब जे गुलनि जीअं खिलंदा मुस्किरंदा रहो, आमीन। समुझा अॼु अरबा जो ॾींहुं ऐं अगस्त महीने जी 12 तारीख़ आहे 2026 साल। ऐं अव्हां खे ॿुधाईंदा हलूं त अगस्त महीनो असांजे प्यारे मुल्क मिठड़े मुल्क पाकिस्तान जे आज़ादीअ जो महीनो आहे। ऐं 14 अगस्त 1947 ते असांजो प्यारो मुल्क आज़ाद थियो। ऐं असांजो मुल्क में जेका जशन आज़ादी मल्हाई वेंदी आहे उन लाइ तयारियूं ज़ोर शोर सां आहिनि। ऐं तव्हां ॾिसंदो हर नंढे वॾे शहर में, वॾो सिटी हुजे, नंढो शहर हुजे, बहराड़ी हुजे, पर उते तव्हां खे इन्हनि झंडनि जूं जेके ठहियल दुकाननि ते जेके पया आहिनि विकिरे लाइ, उन जो तमामु वधीक उन जो खपाव आहे, विकिरो थियनि पिया। हर पंहिंजो रंग जा झंडा आहिनि ऐं पंहिंजो हर तरीक़े सां सुठा सुहिणा ठहियल आहिनि। उन में टोपियूं ठहियल आहिनि, उन में पंहिंजो बेज ठहियल आहिनि। उन में जेकॾहिं तव्हां साइकिल में का झंडी लॻाईंदो, मोटर साइकिल में का झंडी लॻाईंदो, उहा उन क़िस्म जी ठहियल आहे। ऐं जेकी गाॾी लॻाईंदो वॾी कंहिं बिल्डिंग ते, वॾी कंहिं पंहिंजे घर ते, कंहिं सरकारी ऑफिस ते, नीम सर त बिल्कुलु तमामु सुठा सुहिणा अच्छा ऐं साए कलर में जेको झंडा तव्हांखे तव्हांजो घर तव्हांजो अंगण ऐं हिन वक़्तु असां पाकिस्तान जे हवाले सां, पाकिस्तानी परचम जे हवाले सां ॿुधूं पिया। ऐं

0: It's 9. It's 9:30 AM. This time check is brought to you by.
1: Minus ho sari tensions. Jab ho aapke paas Zong 4G ki.
2: हिन मिटीअ जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ी असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद. हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर. जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार. सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिटीअ जो मान वधाए.
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
4: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी.

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो, छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ
2: मोर को दिल्ली राणा, मोर को दिल्ली,
1: आवाज की डोर से बंधा हुआ
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
5: 12686402 फोन नंबर 07440571999।
6: दुनिया में असांजे मुल्क में शुगर जो मर्ज तेजी सां वधी रहियो आहे।
7: इन जा मुख्य कारण मौरूसी, मोटापो, वर्जिश न करण, गैर मयारी ग़िज़ा जो इस्तेमाल वग़ैरह आहिनि। शुगर जे मर्ज जूं ख़ास ख़ास अलामतूं ही आहिनि: बार बार पेशाब जो अचणु, अचानक वज़न घटि थी वञण, बुख घणी लॻण, मथे ते दॿाउ हुजण, हथनि ऐं पेरनि जो सड़ण, सॼे जिस्म में बाहि वांगुरु महसूस थियण, कमज़ोरी महसूस थियण, पेरनि में फट थियण, टंगुनि में गिढियूं पवण ऐं कंध जो गोरो थियण। वधीक मालूमात ऐं इलाज जे लाइ बकाई यूनिवर्सिटी, MBBS, MPhil कराची यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा इन डायबिटोलॉजी।
6: वेहण जो हंधु गुलाम अकबर शुगर म्युनिसिपल स्कूल, लाड़काणो।
7: टाइम रोज़ानो मंझंदि जो 3 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं, ऐं आचर ते सुबुह जो 10 बजे खां मंझंदि जो 1 बजे ताईं। यादि रखंदा, जुमे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि रहंदी।
6: मोबाइल नंबर 0334325127।
8: अदी, ॾिसु त ॾे, मुंहिंजी नुंहुं खे ओलादी कोन थी थिए।
9: भेण, डॉक्टर सुमेरा बिरोही खां पंहिंजी नियाणी जो इलाज करायोसीं, हाणे मुंहिंजी नियाणी औलाद वारी आहे।
10: खुशख़बरी, औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर सुमेरा बिरोही, MBBS, FCPS, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन, शेख जैद विमेन हॉस्पिटल लाड़काणो, माहिर सीज़र ऑपरेशन, औरतुनि में अंडेदानी, बच्चेदानी, रसोलिन जो इलाज ऐं ऑपरेशन, बेओलादी जो ख़ासि इलाज ऐं टेस्टूं, हमल दौरान ब्लड प्रेशर, इन बीमारियुनि जो इलाज, औरतुनि में गैर ज़रूरी पाणी ऐं खून जो इलाज। यादि रखंदा, ग़रीब मरीज़नि खे ख़ासि रियायत ॾिनी वेंदी। डॉक्टर सुमेरा बिरोही, औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर। सिंध मेडिकल सेंटर, VIP रोड, लाड़काणो।
11: टाइम रोज़ानो शाम जो 5 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं, आचर सुबुह जो 11 बजे खां मंझंदि जो 3 बजे ताईं।
10: वधीक मालूमात जे लाइ मोबाइल नंबर 0333-307-153।
12: सचल की सर मस्त धरती,
13: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
12: GFM 88 नेटवर्क,
13: सिंध की आवाज़।

0: हिन मिट्टी जा रंग रौनक सरखेज असा जे हारी साईं ताहिन आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए
1: अच्छन वारन खां परेशान आयो पेश आहे आर्च क्रीम हेयर कलर पंहिंजे पसंदीदा रंग सां पंहिंजो अंदाज़ बणायो वधीक दिलकश ऐं वधीक स्टाइलिश पार्टी हुजे ऑफिस हुजे या के खास मौके जी तयारी हर लम्हे पंहिंजो बेहतरीन अंदाज़ ज़ाहिर करियो आर्च क्रीम हेयर कलर सां पंहिंजी शख्सियत में आणियो नओ रंग नओ अंदाज़ ऐं नई ताज़गी अॼु ई पंहिंजे वेझे स्टोर तां आर्च क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐं पंहिंजी खूबसूरती खे ॾियो नओ रंग आर्च क्रीम हेयर कलर हर रंग में खूबसूरती हर अंदाज़ में एतमाद लाड़काणे जा आयो त आवाज़ भी लाड़काणे जो आहे ॿुधंदा रहो GFM 88.8

अजी हा समय प्रोग्राम रोशन सुबुह में पाण वापस अची चुका आहियूं ऐं समय जा प्रोग्राम रोशन सुबुह में ॿुधो पिया GFM 88 जे नेटवर्क तां, जंहिंमें सखर, लाड़काणो, मीरपुर खास, मोरो, मेहरापुर, मटियारी, मातली ऐं सकरण स्टेशन तां तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया। GFM जो वॾे में वॾो नेटवर्क आहे ऐं तव्हां असांजो साथ रहंदो ठीक 11 वॻे ताईं। ऐं तव्हांखे असां हिन हफ़्ते जो जेको सवाल आहे उहो सवाल तमामु आसान नोट कराईंदासीं, तव्हां नोट कजो। असांजे मिठड़े प्यारे मुल्क पाकिस्तान ऐं सुहिणी सिंध जो उहो सुहिणो शहर कहिड़ो आहे जंहिंखे हिक अख कोन्हे का? जी हा, तमामु आसान सवाल आहे त असांजे सिंध जो उहो कहिड़ो शहर आहे जंहिंखे हिक अख कान्हे का? तव्हां असांखे सवाल जो सही जवाब ॿुधाए सघो था, असांजे SMS ज़रिए बि तव्हां असांखे ॿुधाए सघो था। असांजे SMS जो करण जो आसान तरीक़ो आहे, मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो, उते LRK लिखी स्पेस ॾींदो ऐं पंहिंजो नालो, पंहिंजे शहर सिटी जो नालो ऐं सवाल जो सही जवाब लिखी करे 888 ते सेंड कंदो ऐं साईं जा तव्हां असांजे GFM 88 जे ID ते याने Facebook ते बि तव्हां असांजो सवाल जो सही जवाब मोकिले सघो था। ऐं तव्हां असां ॾे मोबाइल जे वसीले याने मोबाइल फोन असांजे स्टूडियो में 10 बजे आन थींदी, तव्हां हुन ते बि पंहिंजे सवाल जो सही जवाब लिखाए सघो था। असांजो नंबर आहे 0332-1322-88। जी हा, समय जा आसान सवाल आहे सिंध जे सोणे शहर ऐं सिंध सोणीअ जे सोणे शहर उहो असांजो कहिड़ो शहर आहे, उन जो नालो ॿुधाईंदा जंहिंखे हिक अख कोन्हे का? ऐं सिम जा चवंदा आहिनि त किस्मत कंहिं ते बि कंहिंजो वस न आहे हलंदो, असांखे ख़बर ई न आहे त सुभाणे किस्मत असांजे झोली में छा विझंदी, गुल या कंडा। कंहिंखे कहिड़ी ख़बर कॾहिं किथे ईअं बि थींदो जो असां पंहिंजो समूरो जीवन ऐं ज़िंदगी जो समूरो सफ़र कंहिंखे अर्पे छॾींदा आहियूं ऐं वफ़ान जा वाइदा कंदा आहियूं। असीं हिक ॿिए खे सफ़र सपननि जूं साभियूं ॾींदा आहियूं ऐं असीं हिक ॿिए खे रोशनी ॾींदा आहियूं ऐं उहा रोशनी असां इंसाननि खे जीअण जो अहसासु ॾियारींदी आहे, जेको अहसासु हक़ीक़ी मंज़िल ते पहुचाईंदी आहे। पर साईं जा जॾहिं इश्क अची अंदर में देरो ॼमाईंदो आहे तॾहिं सभु उमेदूं पूरियूं थींदे नज़र ईंदियूं आहिनि, छो त इश्क उन्हनि वटि ई महिमान थींदो आहे जिन वटि मन सागर खां बि वॾो गहरो गहरी दिलि हूंदी आहे ऐं पंहिंजो उन जी दिलि वॾी हूंदी आहे, तॾहिं इश्क उन जे अंदर में अची देरो ॼमाईंदो आहे।

साईं मुंहिंजा, मां पंहिंजी ज़िंदगी में ज़रूर अहिड़नि दोस्तनि सां वास्तो पिया, जेके चांहि वारा दोस्त हूंदा आहिनि, पर कंजू कॾहिं बि खीसे में खुलियो हिकु दोस्त जंहिंजी ॻाल्हि कयूं पिया, जेको वेही वेही कंहिं नए दोस्त खे सलाह कंदो आहे त हल त हली यार चांहि था पी अचूं, ऐं जॾहिं होटल ते वेही चांहि पीअंदा आहिनि ऐं चांहि जा वॾा चुस्का वठंदा आहिनि, पर उहो दोस्त काउंटर खां अॻु में ई निकिरी वेंदो आहे त अबा ॾे ख़बर चांहि जो बिल तव्हां भरींदव या न। उहो चवंदो यार मां त जेको आहे सो चांहि जा खमीस ई मां जेको आहे सो भटू ई मुंहिंजो घर पियो आहे ऐं मां काॾां पैसा आणियां, तव्हां पैसा ॾेई छॾियोसि, पर जेकॾहिं रोई रोई पैसा कढंदो त ज़रूर नोट वॾो कढंदो, हज़ार जो या पंज हज़ार ईंदो, जेको होटल वारे ते वटि वरी खुलियो ई न हूंदो, ऐं ज़रूरु जेको नओं दोस्त हूंदो उहो थोरो वीचारो शकी बि थींदो,

मजबूर थींदो यार, दोस्त नओ आहे, थी सघे थो का ॻाल्हि हूंदी। बहरहाल उहो पैसा भरींदो ऐं चांहि जा चुस्का पुराणो दोस्त वठंदो। बहरहाल इहे अहिड़ा माण्हू बि कंजूस हूंदा आहिनि जेके खीसे में हथ ई न हणंदा ऐं पैसा ॿिया ॿिए जा हुनखे पंहिंजा लॻंदा आहिनि, पर पंहिंजा पैसा कॾहिं बि न भरींदो। अहिड़नि दोस्तनि खां कुझु ख़्यालु हुजे जेके हमेशह तव्हांखे किथे न किथे अहिड़ो धोखो ॾेई सघनि था।

जी हा समय असांजे अॼु हिन हफ़्ते जो जेको सवाल आहे त असांजे सुहिणे सिंध जो उहो कहिड़ो शहर आहे जंहिंखे हिकु हक़ कान्हे का। जी हा, अवाम जो सवाल ज़रूर समझंदा त असांजे हिन सुहिणे सिंध जो उहो कहिड़ो शहर आहे जंहिंखे हिकु अखि कान्हे का। जी हा, तव्हां सवाल जो सही जवाब असांखे ॿुधाए सघो था एस एम एस ज़रिए, फेसबुक ज़रिए ऐं मोबाइल नंबर ते तव्हां कॉल करे असांखे सवाल जो सही जवाब ॿुधाए सघो था। असांजो नंबर आहे 0332132288। समय सां वरी फिक्स 10 बजे हलंदासीं न्यूज़ ब्रेक तरफ़ ऐं कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़, वरी वापसि ईंदासीं, कॾहिं बि न वञिजो।

पंजाब में पीपी कश्मीर के जिले नायब सदर समेत टे जणा कतल। पीपी कश्मीर जो नायब सदर आलमगीर कोश, संदस अजीज माशू कोश ए नाजिम कोश पंजाब के इलाके दीनू शाह में हथियारबंदन हथा कतल। संदन जा लाश सादिकाबाद अस्पताल मुंतकिल।

0: सिक्योरिटी के मैदान में पाकिस्तान से मजबूत लागापा चाहूं था पाकिस्तान से गजल तामून वधाइण जा ख्वाहिशमंद आयूं। ईरान के सदर मसूद पज़ेशकियान के पाकिस्तान के घरों वजीर मोहसिन नकवी से मुलाकात बाद मीडिया से गालियों। ईरानी मीडिया मूजिब पाकिस्तान के घरों वजीर मोहसिन नकवी तेहरान में ईरान के सदर मसूद पज़ेशकियान से मुलाकात कई। ईरानी सदर चवण हो तो पाकिस्तान से मजबूत लागापा इलाकई सिक्योरिटी में अजाफे जो सबब बणजी सकन था। बतरफन लगापन से गयल मुफाद के तकवीद मिली। उनखा अग मोहसिन नकवी ईरान के परदेही वजीर अब्बास इराकची से मुलाकात कई। खिते की ताजी सूरताल ते गालियों।
1: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में ये जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का
2: इन मिट्टी जा रंग रौनकू ए जरखेजी असाजे हारिय साई ताहिन आबाद हाने इन जो अन्याब वधीक मान वधायन लाए तवासा गद आए। सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कय आला मयार जो सोना यूरिया जह जो मोती जड़ो दाणो छक।
3: हम छम छम किताबे लेके निकले हम।
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
6: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
7: GFM 91.6।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे ता
5: खाऊं असा सायूं भाजियों खाइंदासी पांजो ताजो फ्रूट इस्तेमाल कंदासी ता असा जे जिस्म में कुवत मुदाफत पैदा थींदी ऐं जिस्म ताकत वठंदो त उन जे कैंसर जे जरासीमन ते हमलो जरूर थींदो तंहिं करे कोशिश कयो सायूं भाजियूं खाओ सुठा ताज़ा मेवा खाओ त असां काफ़ी बीमारियुनि खां बची सघूं था।

जी आसमिन, असांजो हिन हफ़्ते जो सवाल आहे तमामु आसान सवाल आहे ऐं अव्हां खे ज़रूर ॿुधाईंदासीं। अव्हां थोरी कोशिशि कयो, ज़ोर ॾियो, ज़िन ते ज़ोर ॾियो ऐं कंहिं खां चवंदा आहिनि त पुछणो न मुंझणो, ऐं तव्हां ज़रूरु कंहिं पंहिंजे वॾे खां, कंहिं दोस्त पहिरीं प्यारे खां बि तव्हां मालूमात वठी सघो था, तव्हां पुछी सघो था त असांजी तमामु सुहिणी सिंध जो सुहिणो शहर उहो कहिड़ो आहे जंहिंखे हिकु अखि कान्हे का। जी हा, त आसान तमामु सवाल आहे, उहो सिंध जो कहिड़ो शहर आहे जंहिंखे हिकु अखि कान्हे का। तव्हां सवाल असांखे ॿुधाए सघो था एस एम एस ज़रिए, फेसबुक ज़रिए ऐं मोबाइल नंबर ज़रिए बि तव्हां असांखे ॿुधाए सघो था। असांजो मोबाइल नंबर आहे 0332123228।

0: It's 10:30 a.m.
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।
0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by।
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम,
3: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, जीएफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

जी असमन असां जे सवाल जो सही जवाब आहे तमाम सिंध जो सुहिणो शहर जंहिंजो नालो पहिरियां जेको आहे सो चांडका हुयो ऐं चांडका शहर जो जेको नालो बाद में पियो उहो लाड़क नाले हुयो ऐं लाड़क जेको आहे सो लाड़काणे जे लाहौरी महल जो लाड़क हुयो जेको अख खां काणो हुयो उन बाद लाड़काणे नालो पइजी वियो लाड़काणो जी हा त समय जेके असांजे सिंध जा समूरा असांजे स्टेशन ते प्रोग्राम ॿुधनि पिया जीअं की इहा ई ख़बर हुई त हर जानवर खे पखीअ खे इंसाननि खे अखियूं हूंदियूं आहिनि पर इहे अखियूं कीअं जेको आहे कंहिं शहर खे हूंदियूं या उन मां हिकड़ो काणो कीअं हूंदो अखि न हूंदी त बिल्कुलु अवां सम्झी वेंदो त इहो शहर लाड़काणो आहे त जंहिंखे हिकु अखि न हूंदी आहे उहो काणो हूंदो आहे त असांजो इहो लाड़काणो शहर ऐं लाड़काणे शहर जो पहिरियों नालो चांडका हुयो अवां खे ज़रूर ख़बर हूंदी ऐं समय न त असांजे सवाल जो सही जवाबु कुझु दोस्तनि ॾिनो आहे वसीम अकरम चांडियो लाड़काणे खां राजा हमीर चंद अठहतर मोरी खां इक़बाल लाशारी झलोरी मीरपुर ख़ासि खां गुलाब खान कंगो ॻोठ कंगन खां रियाज़ हुसैन फाज़िल कलोड़े खां ऐं फौजी पठाण खान खोसो फुलजी स्टेशन खां हबीब अला तुनियो ॻोठ मोहम्मद तैयब तुनियो खां नूर हुसैन तुनियो लाड़काणा दोहे पियो ऐं साईं मुंहिंजा फ़क़ीर महरम जतोई आगा खान जतोई खां ऐं असगर अली शंबाणी ॻोठ दादन शंबाणी खां हुन सां गॾु आहिनि लतीफ़ मुजाहिद मुज़फ़र ऐं अल्ताफ़ शंबाणी गुलबहार अबड़ो लाड़काणे खां हाजी सोरा मंगरियो सचिरणो मंगरियो लाड़काणे खां लियाकत

जी असमिन ममताज लाशर जी इन खूबसूरत रिश्तन वाले कलाम से प्रोग्राम रोशन सुबह जो वक्त पहुंचे पे पांजी पुजानी ते हयाती बखैर इंशाल्लाह मां सा मुलाकात जरूर थींदी तेसी तई पांजे मेज़बान नेमतुल्लाह जूने जो कडींदा इजाजत अल्लाह निगहबान।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
3: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
4: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
5: brought to you by
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
7: पेट्रोलियम शयुनि जा नवा अघ सिर्फ हिकु ॾींहुं लाइ मुक़रर कया विया। पाकिस्तान जे नौजवाननि जो अज़म तवानाई ऐं तकलीकी सलाहियतूं क़ीमती असासो आहिनि। नौजवाननि खे बाख़्तियार बणाइण वक़्त जी अहम ज़रूरत आहे। सदर आसिफ ज़रदारी जो नौजवाननि जे आलमी लिहाड़े ते पैगाम। संदसि चवण आहे त मयारी तालीम, बाइज़त रोज़गार ऐं जिदत नौजवाननि जूं गॾियल ख़्वाहिशूं आहिनि। पाकिस्तान जी तक़रीबन 67% आबादी 30 वर्षनि खां घटि उमिरि जे नौजवाननि ते ॿधल आहे। नौजवान पाकिस्तान जो सभ खां वॾो इंसानी सरमायो आहिनि।

शखर जी अदालत कतल केस जो डो साबित थियण बदिरां जवाबदार के उम्र कैद जी सजा बुधाए छॾी। फर्स्ट एडिशनल सेशन कोर्ट जे जज जवाबदार अली बख्श शेख के उम्र कैद 30 लख रुपया ॾंड जी सजा बुधाए छॾी। मुआवज़ो अदा न करण जी सूरत में जवाबदार के वधीक 6 महीना कैद भोगणी पवंदी। 2020 में साले परताणे जी हद में जवाबदारनि गोठाणे खे क़त्ल कयो हो। ऐं जश्न आज़ादी में 2 ॾींहं रहिजी विया। सिंध समेत समूरे मुल्क में जश्न मल्हाइण जूं तयारियूं जारी। सूबे जे नंढनि वॾनि शहरनि में क़ौमी झंडनि जी बहार ख़ासि स्टॉल बि लॻाया विया।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: जदीद टेक्नोलॉजी सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर था भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो लई।

50 साल के हैं उनको कहेंगे मैंने मैंने हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे हैप्पी बर्थडे टू यू. इसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. और वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए. आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें आमीन. इसके अलावा मेरी आवाज जिन जिन गलियों और शोबारों शहरों और शराहों वादियों और पहाड़ों दरियाओं और मरगुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे परिसरों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है. तमाम सुनने वालों को चाहने वालों को मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बेगम अहलन वसहलन मरहबा बखैर आगे लेजी आया नू सदसुल्ला बाजार शाह नी हाउ एंड वेलकम इन टू जिंदगी गुलजार है. प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ होगा सुनने को सुनाने को समझने को समझाने को सीखने को सिखाने को बोलने को बुलवाने को और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें आपसे करूंगी. लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना. स्टे ट्यून्ड.

योगी जी प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरीके कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस कीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 888 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है FM88. इस पेज पे आने के बाद आपको मिलती है पोस्ट जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कॉमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं आप लोग. हमें जरूर कॉल करें और ज्वाइन करें हमें. और इसके साथ साथ हम प्ले करने जा रहे हैं एक और सॉन्ग और इसको सुनेंगे, इंजॉय करेंगे. छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएंगे. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो, छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें, बैग में मौजूद करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

0: शादी असांजो नालो आज़ादी जे हिसाब सां हो उहो असांखे ॿुधायो।
1: ओके, कौन सा?
0: कदम कदम कदम कदम
1: ओके जी, बिल्कुल जरूर सुनाते हैं जी। थैंक यू सो मच। एंड ये रहा आपका गाना और इसको हम सुनेंगे और इसी के साथ हम चलेंगे आगे। और मेरे ख्याल से कि हम ओरिजिनल वाला प्ले करते हैं बिकॉज ओल्ड इज गोल्ड, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, इसलिए असली वाला प्ले करेंगे।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: ब्रॉट टू यू बाय
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी।
5: जहाज तब्दील करे सफर करण जी तस्दीक करे छी। मीडिया से गालाईंदे डोनाल्ड ट्रम्प चयो तो मुखे घणो खतरो आहे। तुर्किया मां वापसी ते बे जहाज में सफर कयो हो। बे जहाज में सफर जो फैसलो सेक्रेट सर्विस ए फौज सीक्रेट सर्विस ए फौज के मशोरे ते कयो हो। ईरान ते भरोसो न आए, लगातार कूड़ गालाए रहो आहे। ईरान से मामला ठीक हली रहा है। नाबन हरमुज ते अमेरिका जो मुकम्मल कंट्रोल आहे। पाकिस्तान समेत समूरी दुनिया में नौजवानों जो आलमी अज डी मल्हायो पियो वञे। सिंध जो नौजवान जदीद दौर में इल्म हुनर का महरूम। हुनरी सिख्या लाए जोगा इंतजाम न होण सबब नौजवान परेशानियों जो शिकार आहिन। सदर आसिफ अली जरदारी चयो आहे त पाकिस्तान जे नौजवान जो अज़म तवानाई ए तकलीकी सलाहियतूं कीमती असासो आहिन। नौजवानन के बाइख्तियार बणाइण वक्त जी अहम ज़रूरत आहे। मयारी तालीम बाइज़त रोज़गार ऐं जिदत नौजवानन जूं गडियल ख़्वाहिशूं आहिनि। सिंध हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजिस हलफ खणी वरतो। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस जफर अहमद राजपूत एडिशनल जजिस के हलफ खणायो। जस्टिस मोहम्मद हुमायूं जस्टिस सुरेश कुमार ए जस्टिस शाहनवाज मेमण हलफ खयो। हलफ बरदारी की तकरीब में जजिस ए सीनियर वकील शरीक थे। पंजाब में पीपल्स पार्टी कश्मीर के जिले नायब सदर समेत टे जणा कतल। पीपी कश्मीर जो नायब सदर आलमगीर कोश संदस अजीज माशू कोश ए नाजिम कोश पंजाब के इलाके दीनू शाह में हथियार बंधन कतल कयो। वारसन जो चवण है आलमगीर कोश ए संदस साथी पंजाब के अहमदपुर थाने की हद बोहो वार्ड में यासीन के घर में तरसियल हुआ। हथियार बंधन हमलो कर खेन कतल कयो। टिन्ही जणन के कतल कंदड़ जवाबदारन के गिरफ्तार कयो वञे। जश्न आजादी में ब डी रह सिंध समेत समूरे मुल्क में जश्न मल्हाण जो तैयारियों जारी। सूबे के नंढन वडन शहरन में कौमी झंडन की बहार खास स्टॉल भी लगाया वया। बारन बुढ़न ए औरतन आजादी के मुनासिबत से खास लिबास भी वठी छड़ा। आजादी जो दिन कौमी जोश ए जज्बे से मल्हाण वाले अजम जो वर्जाओ।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कर आला मयार जो सोना।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
1: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात। जदीद

0: टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज ॿुधंदा रहो
2: हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं अब क्लाइमेट चेंज में ये है कि जो है उसी वजह से हमारी जो रेनफॉल है उसका इजाफा होना ग्लेशियर्स का मेल्ट होना मौसमियाती तब्दीली जिसे हम कहते हैं जो एक टाइम पे एक ड्यूरेशन पे होना चाहिए जैसे अब बारिशों का सीजन है लेकिन बारिशों के टाइम पे बारिश नहीं आ रही लेकिन जब हमें बारिश की जरूरत नहीं है और उस टाइम बारिश आ जाए तो सबको हम क्लाइमेट चेंज कहेंगे अब उसमें सिर्फ ये बारिशों का नहीं है उसके अलावा बाकी भी चीजें हैं हमारा जो है टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना उस वजह से हमारे अर्थ को जितने भी चेंजेस का सामना हो रहा है उससे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं
3: ओके अगर आपसे पूछा जाए कि दरख्त मौसमियाती तब्दीली से निपटने में किस तरीके से हमारी मदद करते हैं तो आप हमें क्या बताएंगे
2: जी मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए दरख्तों का ये है कि वो हमारा जो टेम्परेचर है उसे सबसे पहले तो कम करता है ठीक है और उसके अलावा जो है ना हर चीज को वो मेंटेन रखता है अब जैसे फ्लड्स हैं फ्लड्स अगर आते हैं तो अगर दरख्त लगे होंगे तो उसके फ्लो को कम कर देते हैं हर चीज को एक मेंटेन रखते हैं तो इसलिए जो है ना दरख्त सबसे बड़ी एक चीज है एक अहम चीज है जो हमने जो है क्लाइमेट चेंज से अगर बचना है अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है तो सबसे ज्यादा जो एक इम्पोर्टेंट चीज है वो दरख्तों को ज्यादा लगाना है और डिफोरेस्टेशन को रोकना है उसके अलावा बाकी भी चीजें हैं
3: जी कंटिन्यू कीजिएगा
2: बाकी भी चीजें हैं जैसे कि इंडस्ट्रीज हमारी बढ़ रही है सारी बात ये चीजें तो दिन ब दिन जो है हमारे

0: बहुत बड़ा अब चेंज एक आया कि जो है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस तरह की जो है ना हमें उन चीजों पे भी हमें फोकस करना चाहिए और बाकी ग्लोबल वार्मिंग का जरिया बन रही है उन चीजों को हम अवॉइड करें या उनके मुताबिक हम चीजें जो है ना उन पे हम फोकस करें। और डेफिनेटली जो है दरख्त तो वो वाकई इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा बाकी चीजों पर भी हमें जो है ना हमें कंट्रोल करना चाहिए।
1: ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो इस वक्त मौजूदा जंगलात हैं या जो मौजूदा दरख्त हैं उनको बचाने में या फिर अब नए दरख्त लगाने में, दोनों में से किस चीज को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए?
0: अगर हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में जंगलात की वैसे ही कमी है, ठीक है, क्योंकि 25% जंगलात होने चाहिए हर मुल्क में, हमारे पास नहीं। हमारा जो एक एवरेज रहता है 2.5 से 5. समथिंग तक इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, तो इसलिए जंगलात की उनकी भी हमें हिफाजत करनी चाहिए। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसमें यही है कि हमें जो है ना ज्यादा से ज्यादा नए दरख्त लगाने चाहिए। और सिर्फ पौधा लगाना ही मकसद नहीं होता, पौधे की हिफाजत करना, उसे परवान चढ़ाना भी जो है वो भी बहुत जरूरी होता है।
1: अच्छा, अगर देखा जाए पाकिस्तान की बात की जाए तो आप हमें ये बताइए कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं वो हमें इस वक्त किन शक्लों में नजर आ रहे हैं?
0: मैं सबसे पहले तो हीट वेव है। अब पहले ये जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये हम सिर्फ जो है किताबों के अंदर थे, लेकिन हम लोग जो है ना खुद से हमने देखा नहीं था ये सारी चीजें ना, तो अक्सर चीजें हमें वो भी लगती थी कि पता नहीं कितना बाद में जाके ये चीजें हम जो है ना फेस करेंगे, लेकिन अब हम हर चीज के सामने हम देख भी रहे हैं। हीट वेव की वजह से जो है यूरोप में इस साल जो है तकरीबन 10,000 लोग उनकी मौत हुई है, कुछ रिपोर्ट में वो 15 से 20,000 तक भी आ रही है। तो ऐसे पाकिस्तान में भी क्लाइमेट चेंज की वजह से एक तो हीट वेव है, बड़ी हीट वेव की वजह से बहुत सारे लोग जो है हर साल फौत हो रहे हैं, उसके अलावा जो है ना बाकी उसकी वजह से पोल्यूशन भी हो रही है, मुख्तलिफ बीमारियों का हमें सामना भी है, और फ्लड्स की सूरत में तो फ्लड्स जो है ना वो भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और उसके अलावा जो है लैंड स्लाइडिंग की तरफ अगर हम जाए, लैंड स्लाइडिंग भी जो है वो भी डिफोरेस्टेशन की वजह से हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो एक ज़रई मुल्क है, और ज़रई मुल्क जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा मुतासिर होता है, और हमारे पास वैसे भी माली तौर पर भी हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं है। अगर तो बाकी भी तरीके हैं जिससे हम जो है एग्रीकल्चर को हम फेस कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतने बजट नहीं है, तो इसलिए हमें यही चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं और हम क्लाइमेट को कंट्रोल करें।
1: बिल्कुल जी, और अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में दरख्त दर्जा हरारत को कम करने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं?
0: ममालिक हैं वहाँ पर तो अफेक्ट्स होते हैं लेकिन कम होते हैं, जिस तरह का हमारा, क्योंकि मोस्टली हमारे जो इलाके हैं वो गर्म इलाके हैं, तो उधर 2 से 3 डिग्री भी जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर जो लैंड है वो हमारी बहुत ज्यादा मुतासर हो रही है उसकी वजह से। और उसके अलावा जो है एग्रीकल्चर के अलावा हमारे पास वसाइल की भी कमी है। अब हर बंदा

0: जो है एयर कंडीशनर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, या मोस्टली लोगों के पास बाइक्स हैं तो वो ट्रेवल नहीं कर सकते, तो इसीलिए जो है वो दरख्त हमारे मुल्क को डिफोरेस्टेशन या दरख्तों की कमी वो हमारे मुल्क को बहुत ज्यादा मुतासर कर रही है।
1: अच्छा, दरख्तों की कमी की अगर बात की जाए तो दरख्तों की कमी डिफोरेस्टेशन से होती है, तो आप हमें बताइए कि डिफोरेस्टेशन जंगलात की कटाई कैसे बढ़ती है और क्यों बढ़ती है?
0: ये अगर हम बात पाकिस्तान की करें तो हमारे मुल्क में जो है डिफोरेस्टेशन के हवाले से कोई खास भी कानून नहीं है पड़े। जो टिम्बर माफिया है उनके हाथ जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उन्हें सियासी पुश बनाई होती है, उन्हें जो है ना मतलब कि उनकी केयर करने वाले लोग ज्यादा

0: लेकिन जो जंगल बचाने वाले लोग हैं, जो जंगलात वाले हैं, उनके बैक पे कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें एक कानून चेंज करने चाहिए अपने डिफोरेस्टेशन के हवाले से, जो है ना, हमें सख्त से सख्त हमें कानून बनाने चाहिए। लेकिन अब काफी चेंजिंग आई है केपीके में और खासतौर पर पंजाब में, बहुत ज्यादा इस तरह की चेंजेस आई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो है वो फोर्स डिक्लेयर कर दिया गया है, अच्छी व्हीकल्स ली गई है, पहले सहूलियात भी नहीं थी।
1: ओके अच्छा, अगर देखा जाए शहरी इलाकों की बात की जाए, तो खास तौर पे जो पाकिस्तान के शहर हैं वहां पे दरख्तों की कमी है, खास तौर पे कराची जैसे शहर में। तो आप हमें बताइए कि शहरी इलाकों में दरख्त लगाना क्यों जरूरी है?
0: शहरी इलाकों में क्योंकि देखें कि ऑक्सीजन लेने वाले लोग भी ज्यादा हैं, शहरी इलाकों में गाड़ियां भी ज्यादा होंगी, वहां पर इंडस्ट्री भी ज्यादा होगी। अब खासतौर पर हम कराची की बात करें तो वहां पर तो इंडस्ट्री पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, क्योंकि अगर गाड़ियों की बात करें तो वो भी सबसे ज्यादा है, लोग भी सबसे ज्यादा है। तो अब हम ये चीजें तो कम नहीं कर सकते। अब हम किसी को कहेंगे कि अपनी जो है आप एक इंडस्ट्री आप शिफ्ट करें किसी और इलाके में, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ना ही अब हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं कि गाड़ियां हम उनकी कम कर दें। हाँ, ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ, ईवी वाली तरफ हम शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन इस सब में भी वही बात है कि हमारे पास, हम लोग माली तौर पर हम लोग उतना स्ट्रांग नहीं है। उसके लिए यही है कि ज्यादा दरख्त लगाएंगे वो हमारा जो क्लाइमेट है वो एक सही अपनी जगह पर आएगा, जैसा एक क्लाइमेट चाहिए उस शहर में, उस हिसाब से हमें ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए।
1: बिल्कुल अच्छा, दरख्तों की अगर इकसाम की बात की जाए तो क्या हर जगह पे एक जैसा दरख्त लगाना सही है, या वो कौन से दरख्त हैं जो कि लगाने चाहिए क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए?
0: एक ही तरह के दरख्त इतने लगाने चाहिए, मिक्स करके लगाने चाहिए। एक मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि हम सुबह दोपहर शाम हम आलू खाना शुरू कर दें, या एक कोई भी डिश हम खाना शुरू कर दें, तो वो कुछ टाइम के लिए तो हमारी बॉडी के लिए सही होगा, लेकिन उसके बाद जो है वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे ही अगर आप एक किस्म का अगर आप लगाना शुरू कर देंगे तो वो भी हमारे एनवायरमेंट को फिर खराब करना शुरू कर देगा। अल्लाह ताला ने हर दरख्त का, हर पौधे का कोई ना कोई फायदा रखा है, इसलिए हमें मिक्स करके लगाना चाहिए। उसमें फिर ये है कि परिंदे, मुख्तलिफ किस्म के जानवर उन दरख्तों से फायदा ले रहे होते हैं, और ये सब चीजें जो है अल्लाह ताला ने इंसान के फायदे के लिए बनाई है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हमें जहां पे भी हम प्लांटेशन करें हमें मिक्स करके करनी चाहिए, ना कि एक ही पौधे को हम जो है लगाते रहें।
1: अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो हर साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुहिम चल रही होती है प्लांटेशन की, तो प्लांटेशन तो हम कर देते हैं, दरख्त का बीज तो हम लगा देते हैं, लेकिन फिर उसकी देखभाल जो है ना हम नहीं करते। तो आप हमें ये बताइए कि दरख्त लगाने के बाद इनकी देखभाल और बका को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है?
0: दरख्त लगाना तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, असल है उसे परवान चढ़ाना। उसके लिए सबसे पहले तो हमें उसकी सेफ्टी हमने देखनी है कि कोई बाउंड्री वॉल है या हमने कोई उसका सेफ गार्ड हमने लगाया हुआ है, सबसे पहली चीज वो है। दूसरे नंबर पे वाटरिंग है, पानी का आप निजाम देखें, या तो नेचुरली उसे पानी मिल रहा हो, लेकिन हमारा इलाका इस तरह के यहाँ पर औसतन बारिशें भी कम हो रही होती हैं, तो इसलिए हमें जो है ना पानी का भी खास ख्याल रखना है। और तीसरे नंबर पे जो वहां पर लोकल कम्युनिटी है, उसके जो करीबी है, उसे भी हमने अवेयरनेस देनी है कि ये हमने पौधा लगाया है, ये क्यों जरूरी है। सबसे पहले जहां पे भी आप पौधा लगाएं वहां पर आप लोगों का आप इंटरेस्ट देखें, उनमें आप इंटरेस्ट डेवलप करें कि अगर आप वहां पर उनकी केयर नहीं भी कर सकते तो उसके इर्द गिर्द वाले लोग उसकी केयर करें, उसे पानी भी दें, उसकी हिफाजत भी करें, जानवरों से भी उसे बचाएं, और कल को उसे कांटे भी रहें। और वहां पर आपने सिलेक्शन भी आपने ऐसी करनी है पौधे की कि वो किसी दूसरे बंदे को वो नुकसान भी ना पहुंचाए, मतलब कि सपोज किसी के शॉप के बाहर आपने लगा दी, सामने लगा दिया, या जगह उसकी इतनी नहीं है वहां पर आपने, मतलब कि बड़े साइज वाले एक आपने दरख्त लगा दिए जो काफी बड़ा हो जाएगा, जो फैल जाएगा, तो वो सिलेक्शन भी आपने उसी हिसाब से आपने करनी होती है कि कल को वो आपको दरख्त काटा भी ना जाए।
1: बिल्कुल अच्छा, देखा जाए तो बहुत सारे लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, जैसे आपने बात की कि या दरख्त का बीज लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, दरख्त की तहफ्फुज को यकीनी बनाना बड़ी बात है। तो आप हमें ये बताइए कि जिन लोगों में इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है कि प्लांटेशन करने के बाद उनको बहुत ज्यादा तहफ्फुज की भी जरूरत होती है, तो जितने भी आम हमारे शहरी हैं या जो हमारी नौजवान नस्ल है, उसको हम कैसे इस तरफ रागब कर सकते हैं कि वो इसके तहफ्फुज को यकीनी बनाएं?
0: उसमें यही है कि हम उन्हें जो है ना एक तो लेक्चर वगैरह भी हम दें, प्रैक्टिकली लोगों को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 100 रुपए हो गए, या फिर जो लोग जो आपको नजर आते हैं कि वो उनके अंडर कोई टीम है, तो उन लोगों को हमें ना अंदर उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए प्लांटेशन एक्टिविटी में। जब आप लोगों के हाथ से आप पौधा लगवाएंगे, आप उनके जिम्मे आप लगाएंगे कि ये पौधा हम आपके घर के बाहर लगा रहे हैं और इसकी आपने खुद आपने केयर करनी है, तो जब वो अपने हाथ से उसकी केयर करेगा उसे एहसास होगा कि पौधा लगाना और उसे जो है ना दरख्त बनाना, मैच्योर दरख्त बनाना, वो इतना ही मुश्किल काम है। बच्चे की तरह एक पौधे को पालना पड़ता है, फिर जाके बहुत सालों बाद जाके वो एक दरख्त बनता है। तो जब हम लोगों को हम इन्वॉल्व करेंगे, कम्युनिटी को हम इन्वॉल्व करेंगे, तो फिर ये है कि लोगों के अंदर चेंज आएगा।
1: बिल्कुल ऐसा ही है जी, और टाइम भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है, तो मुझे आप ये बताइएगा कि लास्ट में हमारे सुनने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप, उमर अमजद?
0: लोगों को मैं यही पैगाम देना चाहूंगा कि ये मुल्क हमारा है, हम लोगों ने यहाँ पर रहना है और हमारी आने वाली नस्लों ने यहाँ पर रहना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क एक हरा भरा, एक खुशहाल रहे, तो हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त चाहिए। जहाँ पर हरियाली ज्यादा होती है वहाँ पर टूरिज्म भी ज्यादा बढ़ती है, लोग खुश भी ज्यादा होते हैं। हम माउंटेन एरियाज में जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, वो सिर्फ वजह यही है कि हम वहाँ पर ग्रीनरी देखने जाते हैं, वहाँ पर जाके हम रिलैक्स होते हैं, और हमारी एग्रीकल्चर लैंड भी वो भी दरख्तों पे डिपेंड कर रही है। और चाहते हैं अगर हमारा मुल्क खुशहाल रहे तो हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त।
1: ओके जी, बहुत अच्छा मैसेज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन द शो मियां उमर अमजद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत शुक्रिया मिस,
1: थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और ये था आज का सेगमेंट हरा भरा पाकिस्तान, जिसको सपोर्ट करता है जी HFT पाकिस्तान, यानी कि हैपनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान, जिसकी जानिब से आप तक ये सेगमेंट पहुंचाया जा रहा होता है। ठीक है जी, तो इसी के साथ आज का सेगमेंट यहीं खत्म होता है। अगले सेगमेंट में एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक के साथ आपसे चिटचैट होगी कल वाले सेगमेंट में। तो अभी हम जाते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है फ्रॉम योर फेवरेट रेडियो स्टेशन GFM रेडियो नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
3: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
4: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए, आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
5: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
6: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
7: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
8: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
7: सिंध जो आवाज।

के साथ हम चलते हैं जी आगे और आप लोग कॉल कर रहे हैं हमें कॉल करने के लिए 03000113488। आप लोग हमें सिंपली मैसेज कर सकते हैं। सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस कीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 8881 पे, जो कि आप लोग कर भी रहे हैं हमें सेंड। बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के मुझे रिसीव हो चुके हैं, तो सबकी तरफ मूव करेंगे और चेक भी करेंगे कि कहां कहां और कितने लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मुझे ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं आप लोगों के। सो जी मैसेजेस की तरफ चलते हैं और मैसेजेस के साथ साथ हम एक गाना भी प्ले करते हैं, और गाना जो हम प्ले करेंगे वो होगा बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो। सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादे खरीदें और पाए बेशुमार कीमती इनामात।
2: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
2: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

फाइनली इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत और इंशाल्लाह मेरी आपसे चिटचैट होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद द सेम आरजे. सुनना मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, बामान खुदा, अल्लाह हाफिज.

0: सच्चाई हासिल करो।
1: इसमें है हाई कॉल 5 साल की
2: जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
3: It's 1 PM. This time check is brought to you by
4: Fakiri Dex Ointment.
5: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
4: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
6: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
3: Brought to you by
7: Sona Yulia Granular.
8: आज़म इसाक डार पारां रेड सी में व्यापारी जहाज ते हुसैन जे हमले जी मज़म्मत। बहरी जहाज ते हमले में टिन पाकिस्तानी जी शहीद है कि जी जख्मी थियण जी तस्दीक करे छदी। इसाक डार चयो आहे त अहिड़ा हमला बेगुनाह इंसानन ऐं बहरी सलामती लाइ संगीन खतरो आहे। पाकिस्तान सऊदी ऐं यमनी हुकूमत सां राब्ते में आहियूं। रियाज में सफारतखाने खे मढ़न जी ॾेह वापसी ऐं जख़्मियुनि जे बहितरीन इलाज लाइ हिदायतूं जारी कयूं आहिनि।
9: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
10: What's the nature of the threat?
9: I guess there was a threat out there. I didn't really ask too much about it. I get a lot of threats.
8: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तुर्किया में थियल नेटो इजलास बाद जहाज तब्दील करे सफर करण जी तस्दीक करे छॾी। मीडिया सां ॻाल्हाईंदे डोनाल्ड ट्रंप चयो त मूंखे घणो ख़तरो आहे। तुर्किया मां वापसीअ ते ॿिए जहाज में सफ़र कयो हो। ॿिए जहाज में सफ़र जो फ़ैसिलो सीक्रेट सर्विस ऐं फ़ौज जे मशवरे ते कयो हो। ईरान ते भरोसो नाहे, लगातार कूड़ ॻाल्हाए रहियो आहे। ईरान सां मामला ठीक हली रहिया आहिनि। नाबन हरमुज़ ते अमेरिका जो मुकमल कंट्रोल आहे। अमेरिकी फ़ौज असांजे उमीदनि खां बि वधीक कमज़ोर निकिती। अमेरिका सां जंग में वधीक तजुर्बो हासिल कयो आहे, जेको मुस्तक़बिल जे जंगी हिकमत अमलीअ लाइ अहम साबित थी सघे थो। पासदारन इनकलाब जे कमांडर जे सलाहकार मोहम्मद रज़ा जे चयो आहे त अमेरिका सां जंग जेतिरी डिघी थींदी तजुर्बो वधीक हासिल थींदो।

ईरान जो इराक में गुर्दन के थाकन ते वो हमलो मिजाइल से ड्रोन फायर केतरियों ही इमारतू पट थी व्यू पर डेही मीडिया मूजिब ईरान अरबेल के चौधारी किरदार के पोजिशन के निशानो बनाया। ईरानी हमले बाद अरबेल सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल खराब थी वही। पाकिस्तान समेत समूरी दुनिया में नौजवानों जो अज आलमी डी मल्हायो पियो वे। सिंध जो नौजवान जदीद दौर में बेइल्म हुनर खां महरूम। हुनरी सिख्या लाए जोगा इंतजाम न होने सबब नौजवान परेशानियों जो शिकार है। सदर आसिफ अली जरदारी है तो पाकिस्तान के नौजवानों जो अजम तवानाई ए तकलीकी सलाहतू कीमती असासो आहिन। नौजवानों के बाख्तियार बनाने वक्त की अहम जरूरत है। मयारी तालीम बाइज्जत रोज सिंध हाई कोर्ट में टिन एडिशनल जजिस हलफ खणी वरतो। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत एडिशनल जजिस के हलफ खणायो। जस्टिस मोहम्मद हुमायूं खान जस्टिस सुरेश कुमार ए जस्टिस शाहनवाज मेमण हलफ खयो। हलफ बरदारी की तकरीब में जजिस ए सीनियर वकील शरीक थिया।

पंजाब में पीपल्स पार्टी कश्मीर जे जिले नायब सदर समेत टे जणा कतल। पीपी कश्मीर जो नायब सदर आलमगीर कोश, संदस अजीज माशू कोश ऐं नाज़म कोश पंजाब जे इलाइक़े दीनू शाह में हथियारबंदन कतल कयो। वारसनि जो चवण आहे त आलमगीर कोश ऐं संदस साथी पंजाब जे अहमदपुर थाणे जी हद गोहवाड़ में यासीन जे घर में तरसियल हुया। हथियारबंदन हमिलो करे खेनि कतल कयो। टिनी ॼणनि खे कतल कंदड़ जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे।

तलहर में सुल्तानी कैनाल मां निकरंदड़ महनाकी शाख में पाणी कोट खिलाफ आबादगारनि जो धरणो कुछड़ी जे आबादगारनि तलहर राजू खानाणी रोड ते मुज़ाहरो करे धरणो हयो। आबादगारनि जो चवण आहे त महनाकी शाख ते हज़ारे एकड़ ज़मीन आबाद थींदी आहे। पाणी कोट सबबि फसल सड़ी रहिया आहिनि, पाणी ॾिनो वञे।

जश्न आज़ादी में ब ॾींहं रहिजी विया। सिंध समेत समूरे मुल्क में जश्न मल्हाइण जूं तयारियूं जारी। सिंध जे नंढनि वॾनि शहरनि में क़ौमी झंडनि जी बहार। मलीर में जश्न आज़ादी जे मुनासिबत सां रैली कढी वई। मुख़्तलिफ़ स्कूलनि में तक़रीबूं। ॿारनि जूं तयारियूं खे ॾिसण वटां कराची जे डाओ यूनिवर्सिटी जे ओजा कैंपस में तक़रीब। जश्न आज़ादी जे मुनासिबत सां केक बि काटियो वियो। आज़ादी जो ॾिण क़ौमी ऐं जोश जज़्बे सां मल्हाइण वारे अज़म

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान बे नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
4: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध
5: एश एंड डेली स्किन बेडी बिल्कुल सुना प्रोग्राम आप लोगों का अपना है व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करने वाले प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं इस्तेमाल कर सकते तो बहुत से लोग इस वजह से भी परेशान होते हैं कि भाई हमें तो कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं कर पाता, हम तो अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगा भी लेते हैं तो हमारी स्किन मजीद खराब हो जाती है। इस तरह का अगर कोई भी वाला सीन आपके साथ भी बन रहा है तो आप लोगों ने परेशानी होना, बस आपको बताया जाएगा इस प्रोग्राम में कि आप किस तरह अपनी खूबसूरती का ख्याल रख सकते हैं और किस तरह आप अपने खूबसूरत से चेहरे को मजीद ब्यूटीफुल पुरकशिश और हसीन बना सकते हैं। ओके जी, इसी के साथ साथ यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बत और समाज और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया और साथ ही साथ जरा अपना भी तारीफ करवाते हैं। So listeners, for presenting the most beautiful, fantastic, interesting and entertaining character, your RJ and your DJ, Sidra Muskan, naam to sunai hoga. So bilkul aapke Sidra ke saath maujood hai janab, is beautiful se program mein aap logo ko beautiful banane ke liye ready ho jaiye. Iske saath saath yahan par bahut sare log hamare saath maujood hai, so jaldi ji jaldi jaldi se apne haal chaal batate jaiye. So dear listeners, and the kaisa halat hai, kaisi hai aapki halat hai? Ummeed hai shadidan ke bilkul theek thaak honge, sab kul mood ke saath sab kul program ka intezar kare honge. To aapki jo intezar ki ghadiyan thi wo khatam ho chuki hai, finally yahan par humne entriyan maari li hain. आपको बताना, जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजने वाली हूँ। बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक

ये सारे काम कर ली, आंटी फ्री होकर हमारे इंतजार कर रही थी। ऐसे वो सारी अंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान, सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वेली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होंठों पर 440 हल्के संभालने का काम करती हुई ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 लेते हैं, आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जी, आज प्रोग्राम में एक बहुत ही खूबसूरत से मिली नगमे कागज बहुत, और देखा जाए तो 14 अगस्त हो भी फ्राइडे वाले दिन रहा है, तो फ्राइडे वाले दिन तो मेरा प्रोग्राम नहीं होता है, तो मैंने सोचा चलो भाई आज हम ऐसा करते हैं, प्रोग्राम का स्टार्ट लेते हैं तो वो जरा मिली नगमे के साथ लेते हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा मिली नगमा जो कि हमारी लिस्ट में मौजूद है, हम एंजॉय करेंगे, उसके बाद जैसे ही वापस आएंगे तो बताएंगे कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं वाइट एश एंड ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट एंड ब्यूटी प्रोडक्ट।

0: इट्स 1:30 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय।
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM 88
0: नेटवर्क सिंध की।

घाघरी आयासीं त पर असांखे ख़बर पई त हिते त अवेलेबल ई कोन आहिनि, चाहे वाइटिश प्रोडक्ट्स हुजनि या वरी डी स्किन जा प्रोडक्ट्स हुजनि। त तव्हांखे जेको नंबर प्रोग्राम में ॿुधायो वञे थो, नंबर ते तव्हां राबितो करे वठंदा कयो, ऐं राबितो करण खां पोइ तव्हांखे जेको आहे न बिल्कुलु ॿुधायो वेंदो त तव्हांजे एरिया में अवेलेबल किथे किथे आहिनि, या वरी तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराया वेंदा प्रोडक्ट। सो तव्हांखे डायल करणो आहे बाबा 0233274309 0332738 4309 और दूसरा नंबर है 0312502507 0312502507। ये नंबर आप जल्दी से डायल कीजिए ताकि आपके लिए आके करीबी जनरल स्टोर्स पर वाइटी शो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाए। और इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को तमाम जो प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाए तो यहाँ पर आप अच्छे से जानते हैं कि वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कितने सारे और कितने मजे मजे के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, तो वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपको सबसे पहले तो वाइटिश ब्यूटी क्रीम मिल जाती है। वाइटिश ब्यूटी क्रीम जो कि एक नाइट क्रीम है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं रात के टाइम। उसके अलावा आपको साथ में वाइटिश ब्यूटी सोप मिल रहा है, मुफ्त में नहीं मिलेगा, बस आपने परचेज करना पड़ेगा। बोलने का अंदाज कुछ ऐसा होता है जैसे भी लगे कि भाई हाँ वाइटिश ब्यूटी क्रीम परचेज करेंगे तो उसके साथ आपको वाइटिश का ब्यूटी सोप मुफ्त में मिलेगा। मुफ्त में आज के दौर में कुछ नहीं मिलता, ये चीज आप याद रखिएगा। तो वाइटिश ब्यूटी क्रीम के साथ आपने वाइटिश ब्यूटी सोप परचेज करना है। अगर आप सोप लगाते हैं तो, अगर आप सोप नहीं लगाते हैं या फेस वॉश लगाते हैं तो आपके लिए वाइटिश का फेस वॉश भी मौजूद है। बिल्कुल जी, आप इस चीज में बिल्कुल भी नहीं घबराएं कि भाई हाणे अच्छा थींदो, असां त साबुण हणंदा आहियूं, असां त फेस वॉश हणंदा आहियूं। तव्हां जेका भी चीज हणंदा आहियूं तव्हांजे लाइ वाइटिश में अवेलेबल आहे। उन खां अलावा वरी तव्हांजे लाइ वाइटिश लवली क्रीम मौजूद आहे। वाइटिश लवली क्रीम त उन्हनि माण्हुनि जे लाइ आहे जेके बाबा पंहिंजे चेहरे ते फेयरनेस हासिल करणु चाहींदा आहिनि, ऐं तव्हां रेग्यूलर डेली बेसिस ते कोई फेयरनेस क्रीम अगरि तव्हां सिलेक्ट करणु चाहियो था त तव्हां वाइटिश लवली क्रीम जो इस्तेमाल

मां लाज़मी करे डिसो उन खां पो तवां जे लाइ डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब आहे जेको तवां जे एक्ने के खत्म करण जे लाइ तयार कयो वियो आहे उन खां पो तवां जे लाइ लोशन भी अवेलेबल आहे ऐं तवां जे लाइ हेयर रिमूवल लोशंस भी आहिनि जेके तीन मुख़्तलिफ़ अलॻि फ्लेवर जे अंदर अवेलेबल आहे ही तमाम वाइटेज जा प्रोडक्ट आहिनि जेके तव्हांखे इज़ीली हर नंढे वॾे जनरल स्टोर तां मिली सघनि था सो पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर सां मालूमात वठी ॾिसजो नाहिनि अगरि अवेलेबल त तव्हांखे जेको नंबर ॿुधायो न नंबर ते तव्हां राबितो करे सघो था ओके जी सो वाइटेश ब्यूटी क्रीम जी अगर गाल कही वने तो वाइटेश ब्यूटी क्रीम तमा इस्तेमाल कंदा तो तमा के खबर पेजी वेंदी छो तो वाइटेश ब्यूटी क्रीम एक ऐसी क्रीम है जिसको भाई नेचुरल अजा से तैयार किया गया है सबसे पहली बात तो अगर नेचुरल अजा से तैयार किए गए प्रोडक्ट्स आप ज्यादा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं तो आप वाइटेश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर एलोवेरा है मिल्क है एवोकाडो है ये तमाम चीजें जो है ना वाइटेश ब्यूटी क्रीम के अंदर एड की गई है और वाइटेश ब्यूटी क्रीम आपकी जिल्द की खूबसूरती और निखार के लिए एक बेहतरीन ब्यूटी क्रीम तैयार की गई है आपकी जिल्द को नरम मुलायम और तरोताजा बनाने में मदद देती है वाइटेश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपके चेहरे की खुश्की दाग धब्बे बेरोन की ये सारी चीजें कम हो जाएगी और जबकि आपकी जिल्द जो है वो ज्यादा साफ और चमकदार महसूस होना स्टार्ट हो जाती है और इसके अलावा वाइटेश ब्यूटी क्रीम में शामिल जनाब जितनी भी खास नेचुरल सी चीजें आपकी जिल्द की हिफाजत करते हैं और कुदरती खूबसूरती को उजागर भी करते हैं और रोजाना इस्तेमाल से आपका चेहरा फ्रेश खूबसूरत और पुरकशिश नजर आना स्टार्ट हो जाता है अगर आप भी वाइटेश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए बहुत ही परफेक्ट क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है जनाब जो कि आप ऑल स्किन टाइप के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं मर्द हजरात खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है ओके जो उनखां अलावा साबुण जी त तव्हांखे ख़बर आहे वाइटेज जो साबुण तव्हां इस्तेमाल करे सघो था वरी अगरि तव्हां वाइटेज जो फेस वॉश वठो पिया त वाइटेज का जो फेस वॉश है ना उसमें थोरा सा ये है कि भई आप जैसे जाएंगे मार्केट कुझु लोग ऐसे होते न बड़े मासूम से होते जिनको भई तव्हां कुझु बि चई छॾियो त हू हुन जो यकीन करे वेहंदा आहिनि अगरि तव्हां इहो सोचो था त वाइटेज ब्यूटी क्रीम तव्हां वरिती उन जे कलर जहिड़ो बिल्कुलु सेम टू सेम वाइटेज ब्यूटी सोप आहे पर वाइटेज जो फेस वॉश वरी उन जहिड़ो छो न हिन ॻाल्हि ते थोरो वज़ाहत कंदासीं त अगरि तव्हां वाइटेज जो फेस वॉश वठो था त वाइटेज जो फेस वॉश जेको आहे बाबा वाइटमिन सी सां तयार थियल आहे छो त तव्हां ॾिठो हूंदो न मतिलबु इहा चीज़ हिकिड़ी कॉमन सेंस जी ॻाल्हि आहे त वाइटेश ब्यूटी क्रीम तव्हां इस्तेमाल कयो पिया वाइटेश ब्यूटी सो बि तव्हां इस्तेमाल कयो पिया हाणे वाइटेश जो जेको फेस वॉश आहे उहो सेम त हुन जहिड़ो न हूंदो न छो त हुनजी थोरी जेका क्वालिटी हूंदी हुन जे अंदरि जेको चीज़ूं हूंदियूं थोरो चेंज कयूं वेंदियूं न अगरि तव्हांखे उहो साॻियो निखार मिले त तव्हां साबुण इस्तेमाल कंदा त फेस वॉश इस्तेमाल करण जो कहिड़ो ज़रूरु इन लाइ तव्हांजे लाइ वाइटेश जेको फेस वॉश आहे उनखे नए तरीक़े सां सुठे तरीक़े सां ठाहियो वियो आहे जंहिंजे अंदरि वाइटमिन सी आहे वाइटमिन ई आहे जेके बाबा तव्हांजी स्किन खे ब्राइट कंदा एंटी एजिंग जे लाइ बि तमामु ज़बरदस्त आहे सो वाइटेज जो फेस वॉश तव्हां लाज़मी ट्राए करे सघो था ऐं तव्हांजी हर स्किन जे मुताबिक़ आहे जनाब सो तव्हांजी सेंसिटिव हुजे ऑयल हुजे ड्राई हुजे कॉम्बिनेशन टाइप हुजे हर स्किन जे मथां तव्हां इस्तेमालु करे सघो था सो इस्तेमालु करते रहिए और ख़ूबसूरतियां हासिल करते रहिए ओके जनाब सो जल्दी जल्दी से ये तमाम प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको अंदाजा हो सके कि वाकई भाई जान सदरा जेका गाल कई आहे उहा सफ़ा सही गाल कई आहे ऐं हुन खां अलावा तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर से बि अवेलेबल करायो ऐं परचेज़ करण में तव्हांखे आसानी थी वेंदी उन खां अलावा अगरि तव्हां अञा ताईं असांजे प्रोग्राम जो सवाल नाहे ॿुधो त अॼु मां खां सवाल पुछियो आहे फर्ज़ कयो तव्हां वटि पंज जेके न उहे एपल्स आहिनि ठीकु आहे उन्हनि मां ॿ तव्हां खयां बाक़ी तव्हां वटि केतिरा बचा

कामरान अहमद की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय कर रहे हो और इसी के साथ साथ रीमिक्स वर्जन में ही और साथ साथ आप पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए। आप हमारे साथ माँ ज्योति मुझे बताते रहिए। सादिया कहती है आप ही पोइट्री है और लिखती हैं कि गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने तो मुझे खो दिया मैंने तुझे खोया नहीं, नींद का हल्का सा गुलाबी खुमार आंखों में था यूं लगा जैसे वो शब को देर तक सोया नहीं। आए हाय। और उसे ये भी बताया कि वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इंतखाब भी करना है। रशीद खोसो भाई हमें सुन रहे हैं, कहते हैं आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है, मैं सुन रहा हूँ हैदराबाद से, थैंक यू वेरी मच रशीद भाई। स्मार्ट किशोर भाई कहते हैं अद्दा स्मार्ट हाजिर आहे, अज भी यहाँ जवाब दिया, बिल्कुल तव्हांखे जवाब ॾियणो पवंदो, तव्हांखे मोकल थोरी ॾींदासीं। अच्छा अली मुर्तज़ा कहते हैं प्ले ओके गाना आपने बोला है जो कि बहुत अच्छा गाना है, डेडिकेट दिलावर देरो एंड जलपरी के नाम डायरेक्ट टुडेल मावारी जलपरी थी वही डिसाने लगे तो तवा के कुटकी मिली आई नहीं ऐसा बाजे तो हम फिर भी बजा सकते हैं, बस बात ये है कि आप लोगों के कान नहीं खाएंगे। सादिया आपका गाना लगाएंगे, बिल्कुल जी। आप मुझे ये बताएं आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हैं। और शौकत बलोच हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और खुश रहें, थैंक यू जी, थैंक यू। और अखलाक भाई कहते हैं टॉपिक आंसर ओके, निदरी कहती हैं आंखों आंखों का मसला, गाना चलाऊं या फिर ऐसे ही बोल रही हो क्योंकि कभी कभी तुम्हारी बात मुझे समझ नहीं आती।

आप सुन रहे हैं वाइटिश एंड ईस्कन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड ईस्कन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। अगर क्या बात है, आप लोगों की पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। और यहाँ पर फलक शबीर की बहुत ही सुंदर सी आवाज आप एंजॉय कर रहे हैं। सुंदर बनना चाहते हैं तो वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो जो मैंने सुना है ना, तो मेरे जहन पे ये सवार हो गया है, पड़ेगा। हाँ मेरी जान, उसका ये असर हो गया है मेरे दिमाग के ऊपर। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर हम सुन लेते ना या देख लेते ना, तो फिर वो हमारे जहनों पर सवार हो जाती। बिल्कुल वैसे ही।

क्या बात है। इसी के साथ साथ यहाँ पर व्हाइट एश लवली क्रीम है। व्हाइट एश लवली क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि व्हाइट एश लवली क्रीम इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, क्योंकि व्हाइट एश लवली क्रीम एक ऐसा फार्मूला है जो कि आप इस्तेमाल करते ना सिर्फ आपको खूबसूरती मिलेगी बल्कि आपके चेहरे की हिफाजत भी होगी। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि व्हाइट एश लवली क्रीम के अंदर जो है ना वाइटामिन का फार्मूला तो भर भर के डाला गया है, लेकिन साथ साथ सनस्क्रीन भी एड की गई है। सनस्क्रीन का काम ये होता है कि आपकी स्किन पर जो है ना ये सूरज के खतरनाक से असरात आ जाते हैं, आपकी स्किन को डैमेज कर देते हैं, आपकी स्किन को मरा हुआ बना देते हैं। तो उसे जिंदा करने के लिए, उसे निखार में जो है ना वो बेहतरीन तरीके से लाने के लिए व्हाइट एज लवली क्रीम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल जो है ना ये सारे लोग ही कर सकते हैं। सारे से मुराद ये कि आप मर्द हजरात हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, हर स्किन टोन के हिसाब से इसे तैयार किया गया है। वाइटामिन का फार्मूला है, जरा भर भर के वाइटामिन डाले गए हैं। हर तरह का वाइटामिन आपको मिलेगा, जिस भी वाइटामिन की आपकी स्किन के ऊपर जरूरत होगी तो वो बिल्कुल पूरा हो जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर लगाने के क्या तरीके कार होते हैं भाई, आप जब आपको लगे कि बस मैंने बाहर जाना है किसी काम से, आप कोई काम कर रहे हैं या स्कूल आपके बच्चे जाते हैं या फिर आप खुद पढ़ाने जाते हैं, बहुत सारे काम जो अगर आप करते हैं तो बस आपने चुटकियों में रेडी होने के लिए व्हाइट एज लवली क्रीम का इंतखाब कर लेना है। तो व्हाइट एज लवली क्रीम आप ट्राई करके देखिएगा, आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। उनके अलावा डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्ने ट्यूब आए, डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्ने ट्यूब बाबा उन्हें माने जलाया जिनके चेहरे से एक्नी ढाढ़ा अच्छी चुका है। एक्नी अगर तुम्हारे चेहरे से आए तो तुम्हें ट्राई करण घुर्जे डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्ने ट्यूब, जो मेडिकेटेड फार्मूलो है, आयुर्वेदिक फार्मूलो है, इनके अंदर फुल जड़ी बूटियों एड थियल है। तुम पाँच एक्नी के खत्म करण चाहो था तो डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्ने ट्यूब जो इस्तेमाल तुम लाजमी करो पड़ो। यहाँ गाल बुधाई हल डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्ने ट्यूब जो है ना बाबा एतरे सुठे तरीके से तैयार कर तुम्हारे स्किन जहाँ न सिर्फ एक्नी खत्म थी ना बल्कि एक्नी जहाँ निशान आन कोई सड़न जो निशान आ, कोई धक जो निशान आ, नंढपण में तुम खेडा हुआ ना डाढ़ो खेडा हुआ वो तुम्हें को धक लगो हो जो चेहरे से अना निशान मौजूद है उनके खत्म करण चाहो था तो डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब तुम बिल्कुल लगाए सको था। ढो जबरदस्त क्वालिटी जो ही ट्यूब अव उनके अलावा अगर तुम पैंसी कें भी नाइट क्रीम में एड करण चाहो था तो वो भी करे सको था। फार्मूलो ठाण चाहो था तो तुम व्हाइट एज लवली क्रीम ए डॉक्टर पिम्पल ट्यूब वो तुम पाँच नाइट क्रीम में एड करे सको था। तुम्हारी स्किन जी वह सफा वीआईपी थी वेंदी ए तुम सफा जबरदस्त केमिकल का फ्री फार्मूलो भी ठही वेंदो। अच्छा डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब अगर तुम अकेले लगाने चाहो था तो इनके लगाने का तरीके का ढा आसान है। तुम करो पव तुम फेस वॉश करना सब का पैर तपारी हथन के भी क्लीन रखना कर एक्नी वो जो मानू था ना कि कुछ ज्यादा ही पानी चेहरे की केयर करनी पवी है सो पाँच चेहरे के पानी हथन के चंगे तरीके से क्लीन कर उनके सुबू जो तुम्हें रात जो यानी कि ब टाइम में तुम्हें डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब लगानो पव लगे तुम्हें एहसास बबा वाह जो प्रोडक्ट है एडो थदो थदो तक महसूस तुम्हारा एक्नी सफा उत जो मरी वो इन के अलावा अगर तुम चेहरे से सफा घना एक्निया तुम टे मरतबा लगे सो बी बी लाई कड़ी गाल विसरी वही चलो याद अचे तो तो बिल्कुल उसी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और इसी के साथ साथ बताइए आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा ये भाई साहब कहते हैं अगर सैंडल जो निशान हो जाए वो भी रिमूव थी वेंदो तो ट्राई तो करी दिसो लगे तो अदे जाम सैंडल्स खादा है।

0: अच्छा नदरी कहती है वो सुना एल्विस भाई की आगे कोई बोल सकता है क्या एल्विस भाई? हाँ भाई वो भी सुना है, और मतलब मैं मीमर बंदा हूँ तो समझ सकते हैं आप।
1: जुदाइयां वाली दिल उत्ते
0: हां जी कि तेरी बस खैर मंगदी पर मां यो भी मंगदी ते तमा वाइट टी शर्ट प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो सही आ। मकसूद मला कहते मेहरापुर से सिद्रा, अभी अभी मैं ख्वाब देख रहा था, हर तरफ ढोल बज रहे थे, फिर आंख खुली तो समझ आया ये 14 अगस्त चल रहा है। और कहते हैं और जवाब देते हैं कि 3 अमरूद बाकी बचेंगे, 3 अमरूद बचेंगे। सही है भाई सही है। और ये मौजूद है, सलाम अलैकुम, आपका शो वेरी नाइस है, गोठ मोहम्मद तैयब थेबू से हबीबुल्ला थेबू भाई हमारे साथ है। वेलकम करती भाई को। ये किसी ने लिखा है सॉन्ग सुनाए, कौन सा सॉन्ग सुनाए आप, कौन हमारे साथ है ये तो लिखा ही नहीं, बस सॉन्ग सुनाए। हाजिर बाबा सॉन्ग बुझ रही हूँ था। ओके जी, टॉपिक को फॉलो करते रहिए और हमारे साथ साथ मौजूद रहिए। यहाँ पर किशोर भाई कहते हैं टॉपिक आंसर 3, अगर जो मैंने 2 एप्पल्स उठाए हैं वो खाए ना हो तो 5, अगर खा भी गए तो वो भी तो आपके पास हुए ना। अल्लाह जो किल्ल दिए जी।
1: जुदाइयां वाली दिल उत्ते चो तेरा हाल दस की मैं दस मेरी की मचल में कुछ भी नहीं पता तू कितने कितने नाल
0: जनाब। आप यहीं बैठे रहिएगा क्योंकि टाइम हो जाता है, इस तरह हम जाएंगे यहाँ पर न्यूज ब्रेक की जाने, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले, वापसी जल्दी आप लोगों के पास आएंगे, तो सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
3: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म, आज ही करीबी स्टोर से नाम।
4: अब आप सुनेंगे
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
6: मके दिफाई मुआदे बाबत भी आगाह कयो। खिते में जारी चिकनाण के खात्मे के हवाले से भी तफसीली गालू कई हुयूं। बिन्हीं अगवाणन मौजूदा सूरत हाल में राबतन में रहने भी इतफाक कयो।
7: तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है।
8: I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats.
6: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तुर्किया में थियल नेटो इजलास बाद जहाज तब्दील करे सफर करण जी तस्दीक करे छी। मीडिया से गालाइंदे डोनाल्ड ट्रंप चयो तो मुखे घणो खतरो आहे। तुर्किया मां वापसी ते बे जहाज में सफर कयो हो। बे जहाज में सफर जो फैसलो सीक्रेट सर्विस ए फौज के मशवरे ते कयो हो। ईरान ते भरोसो नाहे, लगातार कूड़ गालाए रहो आहे। ईरान सा मामला ठीक करी रहा है। नाबना हरमुस ते अमेरिका जो मुकम्मल कंट्रोल आहे। अमेरिकी फौज असाजे उम्मीदन का भी कमजोर निकती है। अमेरिका सा जंग में तजुर्बो हासिल किया है, जो मुस्तकबिल के जंगी हिकमत अमले लाए अहम साबित थी सके तो। पासदारन इनकलाब के कमांडर के सलाहकार मोहम्मद रजा चयो आहे ता अमेरिका सा जंग जेतरी डिघी थी तजुर्बो हासिल थींदो। ईरान जो इराक में करदन के थाकन ते वड़ो हमलो, मिजाइल से ड्रोन फायर, केतरियों ही इमारतों पट थी वयू। पर नई मीडिया मूजिब ईरान अरबेल के चौधारी करदन के पोजिशंस के निशानो बनायो। ईरानी हमले बाद अरबेल तू सूबे में सिक्योरिटी सूरतहाल खराब थी वही।

पाकिस्तान समेत समूरी दुनिया में नौजवानों जो अज आलमी ढीं मल्हायो पियो वञे। सिंध जो नौजवान जदीद दौर में बे इल्म ऐं हुनर खां महरूम। हुनरी सिख्या लाइ जोगा इंतज़ाम न हुअण सबबि नौजवान परेशानियुनि जो शिकार आहिनि। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त पाकिस्तान जे नौजवाननि जो अज़म, तवानाई ऐं तख़लीकी सलाहियतूं क़ीमती असासूं आहिनि। नौजवाननि खे बाइख़्तियार बणाइण वक़्त जी अहम ज़रूरत आहे। मयारी तालीम, बाइज़त रोज़गार ऐं जिदत नौजवाननि जूं गॾियल ख़्वाहिशूं आहिनि। सिंध हाई कोर्ट में टिन एडिशनल जजिस हलफ खणी वरितो। सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत एडिशनल जजिस खे हलफ खणायो। जस्टिस मोहम्मद हुमायूं खान, जस्टिस सुरेश कुमार ऐं जस्टिस शाहनवाज़ मेमण हलफ खयो। हलफ बरदारी जी तकरीब में जजिस ऐं सीनियर वकील शरीक थिया।

0: सभिनी खे पंहिंजी ज़िमेवारी समझणी पवंदी, मसलनि जो गॾिजी हल करणो पवंदो। पुलिस एहतसाब जो सख़्त निज़ाम आहे। 27,000 अहलकारनि ऐं आफ़िसरनि खे सज़ाऊं बि ॾिनियूं वयूं आहिनि। कराची में सिंध बार काउंसिल खे ख़िताब कंदे IG सिंध जावेद आलम ओडो चयो त पुलिस खे कंहिं सां बि ज़ाती मसलो नाहे हूंदो, राब्तनि में रहणु घुर्जे, कानून जे दायरे में कमु करणु घुर्जे, वकीलनि खे थाणनि जो घेराव न करणु घुर्जे, सोच ऐं रवैये खे तब्दील करणो पवंदो। पंजाब में पीपल्स पार्टी कश्मीर जे ज़िले नायब सदर समेत 3 ॼणा क़तल। पीपी कश्मीर जो नायब सदर आलमगीर कोश, संदसि अज़ीज़ माशूक कोश ऐं नाज़िम कोश पंजाब जे इलाइक़े दीनू शाह में हथियारबंदनि क़तल कयो। वारसनि जो चवण आहे त आलमगीर कोश ऐं संदसि साथी पंजाब जे अहमदपुर थाणे जी हद गोएवाड़ में यासीन जे घर में तरसियल हुया। हथियारबंदनि हमिलो करे खेनि क़तल कयो। 3 ॼणनि खे क़तल कंदड़ जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। सन भरसां ॻोठाणे जो हिकु घर मां 5 ॾींहं पुराणो लाश हथायो आहे। पोरेत अली गुल भरमाणीअ जो लाश ताज़ो मुस्लमान थियल हक नवाज़ जे घर मां मिलियो। पुलिस जो चवणु आहे त लाश ते ज़ाहिरी तौर तशद्दुद जा निशान नाहिनि। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वधीक ख़बर पवंदी। पोरेत जे वारसनि जो चवणु आहे त अली गुल जो लाश संदसि मेघवाड़ दोस्त ताज़ो मुस्लमान थियल हक नवाज़ जे घर मां मिलियो आहे। हक नवाज़ घर भातियुनि समेत घर छॾे फरार थी वियो आहे। जांच कराए इंसाफ़ ॾियारियो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया जैसे मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाए बेशुमार कीमती इनाम।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो।

में ॾियो उहो तव्हांजी स्किन जे हिसाब सां तव्हांखे ॿुधाईंदी आहियां त तव्हांखे कुझु चीज़ुनि जो ख़्याल करणो पवंदो आहे ऐं कुझु चीज़ुनि जो ख़्याल अगरि तव्हां कंदा तव्हांखे पंहिंजी ख़ूबसूरती जी ख़बर हुजे त बाबा असां कीअं ख़ूबसूरत थी सघूं था असांजी स्किन कहिड़ी टोन जी आहे तॾहिं वञी तव्हांखे सफ़ा सही वालो जेको न रिज़ल्ट मिली सघे थो सो अगरि असां हिते डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी ॻाल्हि कयूं था सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम में तव्हांखे ॿ प्रोडक्ट मिलनि था हिकु डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे ऐं ॿियो डी स्किन जो फेस वॉश आहे बिल्कुल जनाब अगरि तव्हां डी स्किन जी ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु करणु चाहियो था त तव्हां बिल्कुलु इस्तेमालु करे सघो था अगरि तव्हां डी स्किन जो फेस वॉश इस्तेमालु करणु चाहियो था त तव्हां उहो बि इस्तेमालु करे सघो था सो हिननि ॿिन्ही प्रोडक्ट में कहिड़ी तव्हांजी स्किन जे लाइ ज़रूरी चीज़ूं आहिनि उहे तव्हां सां शेयर कंदासीं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे ख़बर हुजणु घुर्जे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे हीउ बाबा मेडिकेटेड फार्मूलो आहे हिनखे डॉक्टर जी निगरानी जे अंदरि तयारु कयो वियो आहे ख़ासि करे उन्हनि माण्हुनि जे स्किन जे मुताबिक़ जंहिंजे चहिरे जी स्किन काफ़ी सेंसिटिव हूंदी आहे ऐं सेंसिटिव स्किन सां मुरादी जंहिंजे चहिरे ते कोई बि प्रोडक्ट सूट न आहे कंदो कोई बि तव्हां प्रोडक्ट इस्तेमालु कंदा त तव्हांजे चहिरे ते एक्नी अची वेंदा आहिनि स्किन रेड थी वेंदी आहे त उन सूरत में तव्हांजी स्किन जेको आहे न त अहिड़ो प्रोडक्ट तव्हांजी स्किन चाहे थी त तव्हां इस्तेमालु कयो कोई मेडिकेटेड फार्मूलो हुजे कोई लाइट वेटेड फार्मूलो हुजे जेको तव्हां इस्तेमालु कयो ऐं उहो तव्हांजी स्किन ते सूट करे वञे सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे बाबा जेका तव्हां इस्तेमालु करे सघो था ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेको सफ़ा प्रीमियम क्वालिटी जो प्रोडक्ट आहे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम न सिर्फ़ पाकिस्तान में तव्हांखे मिली वेंदी बल्कि ॿाहिरि जे ममालकात में बि तव्हांखे मिली सघे थी सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम पाकिस्तान खां अलावा ॿाहिरि जे मुल्कनि में बि अवेलेबल आहे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका वाइटामिनी बीट्स सां तयार थियल आहे वाइटामिनी बीट्स अथसि माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन अथसि अल्फा आर्बोटीन आहे कॉजिक एसिड आहे ग्लूटाथायोन आहे इहे सभु चीज़ूं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदरि एड थियल आहिनि ऐं इहे सभु चीज़ूं एड थियण जो मक़सदु इहो आहे त तव्हांजी स्किन जे मुताबिक़ जेको आहे न हू तव्हांखे निखार मिली सघे सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका सिर्फ़ ॿ रातनि में तव्हांखे सफ़ा बहितरीन रिज़ल्ट ॾे पई अगरि तव्हां सिर्फ़ ॿ रातूं इस्तेमालु कयो पिया त तव्हांखे सफ़ा भलो रिज़ल्ट मिली वेंदो सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां इस्तेमालु कयो ऐं न मिलण जी सूरत में तव्हां वटि नंबर मौजूदु हुजणु ज़रूरी आहे जंहिंते तव्हां बसि राबितो कयो तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल थी वञे सो वॾा सिटीज़ हूंदा आहिनि उन्हनि में त तव्हांखे आराम सां मिली वेंदो पर जेके वीचारा माण्हू असांखे ॻोठनि मां ॿुधंदा आहिनि कुझु सिटीज़ अहिड़ा आहिनि जिते अञा ताईं अवेलेबल न थियो आहे त तव्हां हुते अवेलेबल कराए सघो आसानी सां सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल कराइण जे लाइ बसि तव्हांखे डायल करणो पवंदो 03125025907 ऐं ॿियो नंबर आहे 03273834309 हीअ उहे नंबर आहिनि जेके तव्हां डायल करे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते आराम सां इज़ीली वाइजेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि या डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि तव्हां अवेलेबल कराए सघो था सो जल्दी जल्दी अवेलेबल करायो पंहिंजी ख़ूबसूरती जो ख़्यालु रखो बाबा ऐं हुन खां अलावा इस्तेमालु कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन ब्यूटी क्रीम सफ़ा ज़बरदस्त प्रोडक्ट अथव तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे मज़ो अची वेंदो सो इस्तेमालु करे मूंखे ॿुधायो तव्हांखे रिज़ल्ट कीअं मिलनि पिया ऐं जेके माण्हू अञा सोचनि पिया असां इस्तेमालु कंदासीं बाबा जल्दी कयो

0: से।
1: ओके जी, क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना, एंजॉय कीजिए और आप ज्यादा से ज्यादा पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। अच्छा, क्या पेज में इशू है बताएं मुझे जल्दी।

ओह जी क्या बात है, बहुत ही यहाँ पर अच्छे अच्छे आप लोगों के कमेंट्स हैं जिनकी जानिब हम आ जाएंगे। अच्छा तो हमारे साथ हैं जी हाँ नजरी गाना लगाते हैं जी आपके लिए, आप टेंशन नहीं क्यों ले रही हैं। सादिया कहती है व्हाइट एश की लवली क्रीम यूज करती हूँ, बिल्कुल जी आप यूज कीजिए। अली मुर्तजा कहते हैं नकर सिदरा नकर लगे थो तो बस छड़े साड़ी। हिताजला कहते हैं कि सुर बने या आदत बने बने सॉन्ग हलाए जो हाजिर हाजिर हलायू था। और दर्द दिल कहती है अमेजिंग है व्हाइट एज की लवली क्रीम। हाँ जी बिल्कुल बहुत अच्छी है, आप इस्तेमाल करके देखिएगा। और ये किशोर भाई कहते हैं कि एड़ो गाने में ढिचक ढिचक न हूं दो आप केतरो तू मुख्य तलाश हुई लाइव बुधड़ में तो मुख्य हेडफोन्स लगल हूं मैं शायद इन वजह से मर जा। बाकी हाँ तुम डिपेंड करे तो तुम क्या बुधा आयो बाबा असा फुल इको वारा मानू आ इको में हल्द अच्छा एमन सारी कहते हैं मुख्य नंढे होंदे खां ई दिल में धक लगो उन लाइ कड़ो प्रोडक्ट आ उन लाइ तव्हांखे खाइणो पवंदो छो त ज़ाहिरा दिल जो धक ठीक करणो आहे न पर ॿुधाईंदमि छा ख़बर खाई वेठो अखलाक भाई कहते हैं डी स्किन बाबा डी स्किन हाजिर हाजिर डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां इस्तेमालु कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे ॾाढो भलो रिज़ल्ट ॾींदी। उन खां अलावा जेकी जेकी माण्हू डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे रहिया आहिनि उहे बिल्कुल ई तारीफ़ कनि पिया। अच्छा अवेलेबल जो वाकई मतलब हूंदो आहे कॾहिं कॾहिं कुझु ॻाल्हियूं मूंखे पंहिंजो ई समुझ में न ईंदियूं, तव्हांखे कीअं समुझ में ईंदियूं। जाम तालिब सोलंकी भाई मोरो खां तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया। अदी दिलशेर तेवड़ो जो कलाम ॿुधाईंदा तव्हांजी महिरबानी, नवाज़िश थींदी, प्रोग्राम तमामु ज़बरदस्त आहे। थैंक यू वेरी मच प्यारा भाउ, तव्हांजो मोहबतूं आहिनि। अच्छा कहिड़ो पेज में इशू आहे उहो ॿुधायो त नथा, मूंखे सिर्फ़ इहो था ॿुधायो त पेज में इशू आहे, कहिड़ो इशू आहे इहो बि त ॿुधाइजे, ख़बर पए बाबा मसलो कहिड़ो आहे।

ओके जनाब, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय की ओर से ये साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। व्हाइट एशियन डे स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के टावर से। तो यहाँ पर आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ

0: तरह कुछ कोन आहे उहा वारी कार थी वञे जेको असांखे मतिलब कुझु अगरि थींदो आहे त असां चवंदा अलाए छा थो थिए अलाए छा थो थिए अॻिलो माण्हू पुछंदा पापा छा थो थिए चवंदा अलाए छा थो थिए चई उहा वारी कार थी वई प्रॉब्लम आहे मसलो आहे पर कहिड़ो मसलो उहा ख़बर कोन्हे का सो ॿुधायो बाबा कहिड़ो मसलो आहे पेज में जीअं असां ख़बर पए असां सम्झी सघूं न त छा हले पियो मुल्क जान में इन खां अलावा पोस्ट खे तव्हां लाइक ऐं शेयर कयो पिया मोहम्मद आरिफ बलोच मारे साथ
1: शराब जदों पींदे सी असी दुनिया तो वखरे
0: ओके जी सो भाई जान आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है थैंक यू आप हमारे साथ हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके एरिया में नहीं अवेलेबल तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप बिल्कुल अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सकते हैं वो ऐसे क्योंकि आपको जो नंबर बता दें ना उसके ऊपर आप बस राबता कर लिया करें एक छोटा सा मैसेज करेंगे या फिर आप उन्हें कॉल कर देंगे बताएंगे कि भाईजान हमारे एरिया में नहीं मिलती डी स्किन ब्यूटी क्रीम या फिर व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स तो वो अवेलेबल करा देंगे

0: ओ मेरी क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना एंजॉय कर रहे हैं, इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। पोस्ट को लाइक को शेयर करते रहिए, यहाँ पर टाइम हो जाता है जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानब जाया जाएगा, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आएंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सुनते रहिए और हमारे साथ ही जी पूरी पूरी 3 बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।
1: हम तेरे था रुमाल तेरे
2: था। तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। GAFM 88 की आवाज,
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
5: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए। आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
6: छात्रों जो ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बन जाए, तो पर तवा लाए आए एक बेहतरीन मौको। सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाए दाखिलाओं जारी आहिन। 4 सालन जा डिग्री प्रोग्राम GBSN, GBSM, 5 सालन जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPD, 5 सालन जा डिप्लोमा प्रोग्राम LHV, CMW, CNA। खास सहूलियतों स्कॉलरशिप मौजूद। 5 सालन जे कोर्सेज में एडमिशन बिल्कुल फ्री। जने तो DPD प्रोग्राम में सिर्फ 10,000 रुपया दाखिला फीस, आई फीस सेमेस्टर सिर्फ 60,000 रुपया। हिते तवा के मिलंदा एयर कंडीशन क्लासरूम, जदीद लेबोरेटरीज, मुकमल लाइब्रेरी, तजुर्बेकार फैकल्टी, हॉस्टल, पिक एंड ड्रॉप, आई फिजियोथेरेपी, OPD जी बेहतरीन सहूलियत। ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट का मंजूर शुदा, पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का तस्लीम शुदा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे। याद रखो सीट्स महदूद आहिन, तह करे पंहिंजे रोशन मुस्तक़बिल लाइ अॼु ई दाख़िला वठो। ऐं हिकु ख़ासि ॻाल्हि, हिते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सिस, OT, हेल्थ टेक्नीशियन ऐं ॿिया सभु कोर्सिस पिण थींदा आहिनि। एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, Sector 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। राबितो 07115635642-0310-81661।
7: जदीद टेक्नोलॉजी सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
6: छा तव्हां बि पंहिंजो ख़्वाबनि जो घर हिकु अहिड़ी जाइ ते ठाहिण चाहियो था जिते हुजे तहफ़ुज़, जदीद सहूलियतूं ऐं मंज़ूर थियल सिक्योरिटी?
8: त पोइ भली कार हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर में,
6: सखर शिकारपुर रोड ते,
8: डॉक्टर ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल साम्हूं,
6: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां मंज़ूर थियल
8: हिकु शानदार ऐं क़ाबिले एतमाद रिहाइशी मनसूबो।
6: हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर,
8: रिहाइशी प्लॉट्स 80, 120, 150 ऐं 200 गज़ जा,
6: ऐं कारोबारी मौक़नि लाइक कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज ऐं 600 गज।
8: हिते तव्हां खे मिलनि थियूं जदीद सहूलियतूं,
6: साफ़ मिठो पाणी,
8: बिजली, गैस,
6: 24 कलाक सिक्योरिटी,
8: मस्जिद, पार्क, स्कूल, बाउंड्री वॉल, ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि, ही मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेझो आहे,
6: जेको रिहाइश ऐं सीड़पकारी ॿिन्ही लाइ बहितरीन मौको बणाए थो।
8: अॼु ई पंहिंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो,
6: फौरी कब्ज़ो ऐं फौरी रजिस्ट्री।
8: कॉन्टेक्ट
6: 03009317252
8: एंड 03132757860। हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर,
6: तव्हांजे महफ़ूज़ मुस्तक़बिल ऐं बहितरीन इन्वेस्टमेंट जो बहितरीन इंतिखाब।
9: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
10: हेल्थ इज वेल्थ, जहां माहिर डॉक्टर शेयर करते हैं सेहत की असली बात। GFM का हेल्थ अवेयरनेस शो, होस्ट आगा जब्बार के साथ, जहां मुल्क के मायानाज हेल्थ स्पेशलिस्ट ڈاکٹرز صحت سے متعلق اہم ٹاپکس پر اپنا ایکسپیرینس، پروفیشنل رائے اور مفید معلومات شیئر کرتے ہیں۔ اپنی میڈیکل ایکسپرٹیز اور ہیلتھ کیئر برانڈ کو ہزاروں لسنرز تک پہنچانے کے لیے ہیلتھ از ویلتھ کا حصہ بنیے۔ ہیلتھ ایکسپرٹ یا پروگرام اسپانسر کے طور پر اسپانسرشپ کے لیے آج ہی رابطہ کریں۔ آگاہ جبار 03009312700۔
11: यार मछा क्या किथे वन्या, घर में बैठो यहाँ पर ठीक ही नया, शायद मुझे जिंदगी लायक दवाई नहीं थी।
12: छो भला छा छुआ तुखे, साफ साफ बुधा मसलो छाए।
11: यार एक मसलो हुजे त बुधाया, मुझे ते मसलन जी कतार लगल आहे, न भुख सही लगे थी, जे कुछ भी खावा थो त हजम ही न थो थे, पेट फूक जी वने थो, हथ पेर सुन थी वन था, सजो डी सुस्ती महसूस थे थी, कह कम जो रहंदो ही नाया।
12: यारे तुझा घणा न, बस हिक ही मसलो आ।
11: हिक इहो किए?
12: हाँ तुझो मैदो खराब आ, छा तो न बुधो आ, मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त, जे मादो सही न होंदो त भुख भी न लगंदी, न हाजमो थींदो ऐं न ताकत मिलंदी।
11: त पो मां छा कयां?
12: सोलो हल आहे, इस्तेमाल कर शिफाए मैदा कोर्स, हे कुदरती जुज़न मां तैयार कयल कोर्स, तुझे जिस्म जो हिसो बणजी, तुझे मैदे के बिल्कुल ताज़ो ऐं मज़बूत करे छॾींदो, भुख खुली वेंदई, खाधो सुठे नमूने हज़म थींदई, पेट फूकजण खत्म, सुस्ती खत्म, जिस्म में ताकत ईंदई।
11: वाह यार, वाह जी गाल बुधाई थी, पर ये किथे मिलंदो?
12: यो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे सामू अल नूर दवाखाना रोड़ी, ऐं राब्ते जे लाइ नंबर भी अथई 0305-58-00-616। शिफाए मैदा कोर्स, मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त।
7: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
13: छा तवां भी पंहिंजो ख्वाबनि जो घर हिकु अहिड़ी जाइ ते ठाहिणु चाहियो था, जिते हुजे तहफ़ुज़, जदीद सहूलियतूं ऐं मंज़ूर थियल सिक्योरिटी?
14: त पोइ भली कार हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर में,
13: सखर शिकारपुर रोड ते,
14: डॉक्टर ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल साम्हूं,
13: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां मंज़ूर थियल
14: हिकु शानदार ऐं क़ाबिले एतमाद रिहाइशी मनसूबो।
13: हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर,
14: रिहाइशी प्लॉट 80-120, 150 ऐं 200 गज जा,
13: ऐं कारोबारी मौक़े लाइक कमर्शियल प्लॉट 50 गज ऐं 600 गज।
14: हिते तव्हां खे मिलनि थियूं जदीद सहूलियतूं,
13: साफ मिठो पाणी,
14: बिजली, गैस,
13: 24 कलाक सिक्योरिटी,
14: मस्जिद, पार्क, स्कूल, बाउंड्री वॉल, ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि, ही मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेझो आहे,
13: जेको रिहाइश ऐं सीड़पकारी ॿिन्ही लाइ बहितरीन मौको बणाए थो।
14: अॼु ई पंहिंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो,
13: फौरी कब्ज़ो ऐं फौरी रजिस्ट्री।
14: कॉन्टेक्ट
13: 03009317252
14: एंड 03132757860। हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर,
13: तव्हां जे महफ़ूज़ मुस्तक़बिल ऐं बहितरीन इन्वेस्टमेंट जो बहितरीन इंतिखाब।
10: क्या आप अपना पैगाम हजारों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के एडमिशन हो, किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक बिजनेस के प्रमोशन, जॉब वैकेंसीज, पब्लिक अनाउंसमेंट्स, इवेंट्स, सेमिनार्स, स्पेशल ऑफर्स, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स, लाइव मेंशंस और कस्टमाइज्ड प्रमोशनल कैंपेन्स या किसी भी किस्म के एडवर्टाइजिंग कैंपेन, GFM है आपका भरोसेमंद मीडिया पार्टनर। अपनी एडवर्टाइजिंग को दीजिए ज्यादा रीच, बेहतर इम्पैक्ट और मौसर नतीजे। एडवर्टाइजिंग और बुकिंग के लिए आज ही राब्ता करें स्टेशन मैनेजर बाबर शेख 03009319667।
15: 44 सालनि जो तजुर्बो, हज़ारे मरीज़नि जो एटमा होम्योपैथिक क्लिनिक, होम्यो लियाकत अली खान पठाण, DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद। 44 सालनि जी वसी तजुर्बे सां हर क़िस्म जा आसाबी अमराज, जोड़नि जो सूर, मैदे में जलन, गैस, बदहज़मी, तेज़ाबियत, गुर्दनि जी पथरी, बवासीर, बे औलादी, वारनि जो किरण, गंजपण, फॉलेज, ख़ारिश ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ सिहत जी तकलीफ़ुनि लाइ माहिराना होम्योपैथिक सलाह ऐं मुआसिर इलाज फराहम करे रहिया आहिनि। आगा होम्योपैथिक क्लिनिक सखर, नए पिंडवारी पुल जे साम्हूं, PSO ऐं शेल पेट्रोल पंप जे विच में। टाइमिंग छंछर खां खमीस, सुबुह 10 वॻे खां शाही पुल जे साम्हूं। PSO ऐं शेल पेट्रोल पंप जे विच में। टाइमिंग छंछर खां

ओके वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफएम 88 नेटवर्क मौजूद हमारे साथ जनाब सखर बोरो मिर प्रकाश मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। ओके जनाब तो ढोला सानू प्यार दिया नशिया ते लाके हुण साडा ढोला नहीं हो बनदा जानू नहीं हो बनदा पर तमा के छा करना तमा के टी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करनो आ ये इलाजन वाली मोहब्बत जे कहन हुआ कदी भी ताके रास नहीं जो पांजी खूबसूरती जो ख्याल रखो बाबा सोणा थियो आई पांजी पाण सा मोहब्बत करण स्टार्ट कयो उन जे तमा के टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करनो पंदो आई टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जी सब का बेहतरीन गाल त बिल्कुल ही आए त टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जी की आए ही बाबा ऑल स्किन टाइप जे लाए आए अगर तुम्हारी स्किन सेंसिटिव आए तो कोई भी तुम्हारा इस्तेमाल करी सको था छो तो सेंसिटिव स्किन के मुताबिक ही इनके अड़े तरीके से तैयार कयो है जो मेडिकेटेड फार्मूलो है जो मतलब यो हों तो डॉक्टर्स इनके अंदर जो निगरानी से डॉक्टर्स तैयार किया है स्किन ब्यूटी क्रीम के तो सेंसिटिव स्किन है कड़ी भी स्किन है तुम्हारे स्किन के मथा सफा VIP रिजल्ट दींदी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो तक बिन रात के इस्तेमाल में सफा भलो रिजल्ट दे पी सो लाजमी तुम भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो खूबसूरती जो ख्याल रखो।

லிஸ்ட் ஃபுல்லா பாபா லிஸ்ட் ஃபுல்லா ஆசரோ நான் கஜோவாணி. गानो बुधणो हुजे त थोरो पहिरियां ॿुधाए छॾींदा, लास्ट लिंक में गाने जी तव्हांखे कॾहिं बि फरमाइश न आहे, इहो हिकिड़ो रूल आहे, सम्झो था? सो बिल्कुलु तव्हां असांजे प्रोग्राम में मौजूद आहियो, ऐं हमारे साथ हैं जी फज़ीला सिंधी, कहती हैं अस्सलाम अलैकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी वेंसडे आफ्टरनून, माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सित्रा मुस्कान, आप कैसी हैं? मां सफ़ा भली आहियां, तव्हां ॿुधाए कीअं आहियो? कहती सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम इन काइनात और सभु स्वीट सिस्टर्स के नाम. ओके जी, सबको वेलकम कहा.

हमेशा। और अख्तियार अली सिंधी हमारे साथ ही प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपको खुश आमदीद कहा जाता है। नदरी कहती है कि मैं हूं ना फेस वॉश लवर, मैं यूज करती हूं, बहुत अच्छा है फेस वॉश, वाइट एज फेस वॉश। ओके जी, इस्तेमाल करती रहिए। और हमारे साथ मेहताब अली इंटर भाई। मेहताब भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मजे में। और जी कमर जमान बलोच हैं, कहते हैं अब तारे नहीं गिनते, अब जागा नहीं करते, खुश्क पत्तों की आवाज पे दरवाजे की तरफ, नंगे पांव अब भागा नहीं करते। वाह वाह वाह वाह।

अच्छा बिल्कुल इहो ई ॻाल्हि आहे. सभिनी खे इहो लॻंदो आहे, ॿियनि जा अगरि कॉमेंट पढ़ंदी आहियां त लॻे थो सभिनी जा कन बंदि हूंदा आहिनि, पर तव्हांजो पढ़ंदी आहियां त सभिनी जा कन खुली वेंदा आहिनि. ईअं छो? मूंखे ड्रामा में हूंदा आहिनि, मां सभिनी जा कॉमेंट्स पढ़ंदी आहियां, पर पोइ बि छोड़ो इग्नोर मारो. और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए. अच्छा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम से अगर तुम्हें खबर है तो डी स्किन जो फेस वॉश भी तुम्हें मिले पो. सो जनाब, डी स्किन जो फेस वॉश भी तुम्हारे लिए अवेलेबल आई. अगर तुम मार्केट वनो तो खाली हथ न मोटो जो बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम से अगर तुम्हें डी स्किन जो फेस वॉश भी परचेज करो पवे. डी स्किन जो फेस वॉश अगर तुम्हें बुधाईदी हलां तो डी स्किन जो फेस वॉश है ढो जबरदस्त फेस वॉश है. जी तुम डी स्किन जो फेस वॉश इस्तेमाल कदा तो तुम्हें इहा गाल खबर पेजी वी तो डी स्किन जो फेस वॉश एतरी जबरदस्त क्वालिटी से तैयार थो है. अगर तुम्हारी स्किन से प्रॉब्लम्स आए निशाना अची वा तुम्हारी स्किन की जो रंगत थोड़ी डिम थी वी है, या फिर ये भी कई मरतबा तो तुम उम्र का सफा घना वा लगन स्टार्ट वा. अगर ये मसला तुम्हारे गुड मौजूद है तो कदा तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम से डी स्किन जो फेस वॉश मिले पो तुम्हें आराम से तुम्हें करीबी जनरल स्टोर से वही परचेज कर सो था. डी स्किन जो फेस वॉश है ना, यो हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार थियल है जो तुम्हारी स्किन के मॉइस्चराइज कह डीपली हाइड्रेट कहवी स्किन के क्लीन भी रख है. तो मर्द मायो सभी हणी सन था. जनाब ऑल स्किन टाइप जो लाइ है. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ए डी स्किन फेस वॉश ढो जबरदस्त कॉम्बिनेशन है. ट्राई कर मजो अची वेंदव. अच्छा, मुख्य कें फैजाली जी गाने जी फरमाइश करी छी हुई, सो ही गानो उनके डेडिकेट. अच्छा, साकिब अली पमर हमारे साथ हैं. वालेकुम अस्सलाम, कहती है मैं मायरा हूँ. अच्छा मायरा, वालेकुम अस्सलाम, आपको वेलकम कहा जाता है. कहती हाय अला, आपकी आवाज सुनकर सुकून मिलता है मुझे. भूल तो नहीं गई है ना आप? नहीं नहीं, आप मायरा याद है मुझे. बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं. और आपने शायद कोई गाने की फरमाइश कर दी. मैं कोशिश करती हूँ, टाइम बच गया तो आपका गाना लगा दी.

रातुल अहमदानी, बहुत शुक्रिया आप हमारे सारे दर्दे दिल आपको गाने पसंद आ रहे हैं। ऐसा कहते कोई मसलो ना ही बाबा। विशान अली बोजार, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद राशिद अवान हमारे साथ ही, माशाल्लाह प्रोग्राम अच्छा जा रहा है, थैंक यू। निधि मुझे भी यही लग रहा था, इसलिए मैं चुप करके बैठ गई। अच्छा मीर शहनवाज बोजार कहते गुड शो, थैंक यू जी। मायरा कहती है हाँ मायरा देखेंगे, बहुत शुक्रिया। और हैप्पी गर्ल आ चुकी है, वालेकुम अस्सलाम, माय मोस्ट फेवरेट आज। आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? मैं भी आ गई प्रोग्राम में लास्ट लिंक में, वेलकम टू शो, आपको भी वेलकम कहा जाता है।

अच्छा, हमारे साथ महबूब अली मोरो सिटी से हमारी प्यारी सिस्टर सिद्रा मुस्कान. वालेकुम अस्सलाम. हेलो, हमेशा मुस्कुराती रहिए, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, वीआईपी प्रोग्राम. ओ क्या बात है, सो नाइस ऑफ यू. सिस्टर फायजा का नया गाना तो लगाएगा, थैंक्स फरमाइश अली रजा भंड की है. ओके जी, गाना एंजॉय करें मेरे प्यारे भाई. थरी मीरवा से हमारे साथ हैं जी महबूब अली शर, रिजवान अली, इमरान अली शर. प्लीज मुमताज मोलाई सुनाइएगा. और डी स्किन वीआईपी आहे, डी स्किन वीआईपी आहे, लगे तो तुम्हारा डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल किया है. डी स्किन ब्यूटी क्रीम से अगर तुम डी स्किन जो फेस वॉश भी ट्राई करी सको था, समझो था. सो डी स्किन जो फेस वॉश भी तुम लगाए जो ताकि डाडो मजो अची वो. अच्छा, कदें कदें सोची नहीं मैं यो छो चुने डाढ़ो मजो अची वो. मतलब तव के जदी खूबसूरती मिलंदी तो ता सेटिस्फाइड थी वेना है, पो ता के वाके मजो ही नो ना, ता सोची ना बाबा वाह वाह वाह डाडी मजे जी स्किन थी वई है. सो बिल्कुल उन्हीं वे में. अच्छा, तनवीर कहते हैं बाची अब्दुल रऊफ मक्सी का सॉन्ग तो सुनाए. तनवीर भा बिल्कुल हलाइण की कोशिश कयूं था. थैंक यू तुम्हारा सा गड आयो. मकसूद मल्हा कहते हैं आदाब आदाब, आपका शो लाजवाब है और आपकी आवाज बेमिसाल है. थैंक यू. डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी बेमिसाल है. डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुल इस्तेमाल करने वाले लोग ऐसा ही बोल रहे हैं. अल्ताफ बलोच जानचानी चाचू हमारे साथ हैं. प्ले शमन. शमन जो गानों तो असा बुधो से नी चाचा आई तुम डेडिकेट कर अजरा खोसो बिस्मिल एंड मी. सो थैंक यू. अच्छा, ये कहो पैनल से खाली मैसेज मुख्य मिलो न पढ़ा तो समझी वनो, समझो. और जागजानी चाचू कहते हैं सेकंड मैसेज है फरीहा परवेज का, जिंदगी तुझे ढूंढू कहाँ गाना लगाए. डेडिकेट डॉक्टर नजमा, तबस्सुम बिस्मिल रफीक एंड यू. अच्छा, ही सॉन्ग मां तवा के जिको ना पंज बजे वाले प्रोग्राम में बुधराई.

अच्छा ताहिरा भी हमारे साथ कहती है अस्सलाम वालेकुम, आपको कैसी हो, आपका शो सुन रही हूँ ताहिरा, थैंक यू वेरी मच मेरी जान आप हमारे साथ है। प्रोग्राम में आपको वेलकम कहा जाता है और ऐसे ही आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करती रहें। और इनका अलावा एसन कहते हैं

ओके, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना हमने इंजॉय किया और साथ ही साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं वाई जेस इंडी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाई जेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के 51 से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में तो आप जान ही चुके हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसी क्रीम है जो कि आप लोगों को 2 रातों में जो है ना बहुत अच्छे वाले रिजल्ट दे रही है। मेडिकेटेड फार्मूला है और जनाब डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है। इसके अंदर वो तमाम चीजें की गई है जो कि आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए काम आ सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है। बहुत ही कमाल और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आप बिल्कुल गुड़ गाएंगे जैसे लोग बोल रहे हैं। भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम बेमिसाल, आए हाय। डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो, डी स्किन फेस वॉश लगायो, सफा सोना सोना थी बनो। अच्छा अली मुर्तजा कहते इतने सारे एड्स एक भी वैसे आप किसी डॉक्टर से मशवरा कर ले, क्या पता इस मसले का हल निकल ही आए। अच्छा कमर जमान बलोच भात वहाँ जो मोहब्बत हुआ प्रोग्राम बुधो पया हैप्पी कहती है वाह वाह शो तो बहुत अच्छा है, थैंक यू हैप्पी गर्ल। अच्छा जवार मोहम्मद बचल संबानी भाई हमारे साथ मौजूद है, भाई को वेलकम कहा जाता है। वालेकुम अस्सलाम के साथ साथ मायरा कहती हैं तरक्या बाबा शाम को भी आप शो करती हैं। हाँ जी बिल्कुल शाम को भी शो करती हूँ और आप हमारे साथ हैं, थैंक यू।

जी बिल्कुल, मास्टर मंजूर साहब लिस्ट में मौजूद थे और लास्ट में ये वाला गाना मैंने जो था ना वो क्यू करके लगा लिया था। ये मुझे शायद हिदायतुल्लाह अहमदानी ने फरमाइश कर दी थी, तो मिलकर इस गाने को भी इंजॉय करेंगे। इसके साथ साथ हमारे जाने का वक्त भी बिल्कुल करीब आ चुका है और आज के जो प्रोग्राम का टॉपिक था उसका जवाब तो तकरीबन आप सब लोगों ने ही सही दे दिया है। बल्कि इतना आसान है, इतना बच्चों वाला सवाल पूछा था। तो अगर आपके पास 5 एप्पल्स मौजूद हैं, ठीक है, आपने 2 उठा लिए और आपके पास कितने बचे? तो जाहिर सी बात है आपके पास 5 ही बचे, क्योंकि 2 उठा लिए तो वो भी तो आप ही के पास है ना, तो 5 ही बचते हैं। ये सवाल का जवाब था और आप तमाम तो लोगों ने सही जवाब दिया है। क्या बात है जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा हो चुके हैं आप लोग। और ये सारा कमाल इसी वजह से है कि आप हमारा प्रोग्राम डेली सुनते हैं। अच्छा, ओके सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी इस्तेमाल करियो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहिए आदत भी तुम डेली अपनायो बाबा। डेली अगर तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना पो था वाह वाह थी मुल्क में। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिका पाकिस्तान असा गडो गड बाहर जे मुल्क में भी अवेलेबल है, यानी इन चीज से तुम अंदाजो लगा था बाबा ही केडो प्रीमियम क्वालिटी वालों प्रोडक्ट्स है जो तुम इस्तेमाल कर तुम्हारी खूबसूरती सफा नेक्स्ट लेवल से हली वी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी मर्द मायू सभी इस्तेमाल कर सकन था। दर्द दिल कहती है चंदा का शो सुनने की आदत जो है, हाँ बाबा यह आदत तेज ताई तो न वने जेस ताई माँ शो कंदी रहा भले वने जदे माँ हली वन सो हाँ भी माँ वना पही बिल्कुल तमाम का मोकल वी वरी तमाम सा मिलूं था बाबा 5 बजे वाले प्रोग्राम में ज्वाइन कदा मानो लाइ सरो ख्याल रखना किथे का गलती थी हुए तो माजरत कयूं था। जो फीडबैक रही वो है जो गानड़ो रही वो है सभी को माजरत कयूं था। मोकल लाड़ी ना बाबू सेन सलामत सलामत।

0: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ी असांजे हाणे इन जो अञा बि

0: ही कंबाइन वधाएं लाए तमासा गड़ाए सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान दे नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: हर दिन पीर की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए FM की आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज।

0: धरती
1: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
0: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: GAFM Network, सिंध की आवाज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
0: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: देखिए ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की
2: मजाओं में रची बसी है बदका एफएम की आवाज।
1: जीए एफएम
3: हक सच जो गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

ॿिन्ही मुल्कनि पाकिस्तान समेत 40 मुल्कनि खे बि आगाह कयो आहे। ॿई मुल्क जंगबंदी मुआदे जी वाध वारी तारीख़ ते कम करे रहिया आहिनि। अमरीका ऐं ईरान विच में जंगबंदीअ वारो मुआदो 17 अगस्त ते ख़तम थियण वारो आहे। पाकिस्तान में मुक़रर ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरीअ जी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सां मुलाक़ात, ॿिनि तरफ़नि लाॻापन समेत ख़िते जी मौजूदा सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठ। ॿिन्ही अॻवाननि जो ख़िते जी सूरतहाल ते राब्तनि में रहण ते बि इतफ़ाक़। इसहाक़ डार चयो त पाकिस्तान ख़िते जी अमन ऐं इस्तेहकाम लाइ कोशिशूं जारी रखंदो।

पाकिस्तान रेड सी में बहरी बेड़े ते हुसैन के हमले में टे पाकिस्तान के शहीद थियण की तस्दीक कर छी। नायब वजीर आजम इसहाक डार पारा हमले की मजम्मत पर ही तर्जुमान किया तो पाकिस्तान सऊदी क्यादत में बहरी सलामती लाए कायम बहरी इतिहाद जो हिस्सो है। सप्लाई चेन ए बहरी सफर के तहफ़ लाए इतिहाद के पदरनामे ते अमल करण लाए सहकार लाए तैयार है। मक्का दिफाई माहिदो वाज़े आहे एक मुल्क के हमले ते टिनी मुल्कन ते हमलो समझो वेंदो। मक्का माहिदे तहत खेते की सलामती ए अमुन लाए कोशिशू जारी रखी वेंदो। माहिदो अमुन अमान ए सलामती बाबत रुगो टिन मुल्कन ते महदूद ना है, खेते में अमुन वाली कोशिशू भी जारी आहिन। वजीर आजम पहरी यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जो ऐलान कर छो। शहबाज शरीफ चो है तो पॉलिसी तहत समूरी लेबर फोर्स में औरतों लाए 25% कोटा हुंदी। हर साल स्टार्टअप लाए 10% कोटा मुख्तस कई वेंदी। नौजवान के आलमी डी तकरीब के खिताब कन्दे वजीर आजम अशराफिया के बार तालीम जो बेहतर सहूलतू मिली वेंद। गरीब शागिर्द यारन के तालीम के मैदान में अगत आंदो पे वे चाहूं था बेन मुल्कन के मुकाबले में पोते न रहूंगी।

सूबा ठाहिण सां मुल्क टुटंदो न पर वधीक मज़बूत थींदो। हिन वक़्त मुल्क में नवनि सूबनि जो ठहण ज़रूरी आहे। इस्लामाबाद में तकरीब खे ख़िताब कंदे वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो त सूबनि जी ॻाल्हि ते इज़त ऐं गैरत जी ॻाल्हि थींदी आहे। गटर में किरी ॿार जे मरण ते गैरत छो नाहे जाॻंदी। वफ़ाक हर साल 8,884 अरब सूबनि खे ॾींदो आहे। समूरी रक़म सूबनि जे चइनि वॾनि वज़ीरनि खे मिली वेंदी आहे। यूसीज ताईं फंड्स पहुचण जो को बि निज़ाम मौजूद न आहे। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा केतिरनि ई मुल्कनि खां वॾा आहिनि। जॾहिं पाकिस्तान जी आबादी 3,70,00,000 हुई त 4 सूबा हुआ। हाणे आबादी 26,26,00,000 आहे, पोइ बि 4 सूबा आहिनि। पिंडी वाके जी शफ़ाफ़ जांच थी रही आहे। मुल्क खे अदम इस्तेहकाम जो शिकार थियण न ॾींदासीं। पीटीआई जी नफ़रत ऐं इंतशार सबब काल ऐं 9 मई वारो वाकियो थियो। ममलकती वज़ीर तलाल चौधरी चयो त पिंडी वाके में मुलविस शख़्स खे ज़हनी मरीज़ करार ॾेई वाके खां फरार नथो थी सघिजे। शख़्स ज़हनी मरीज़ हो त हुन घर भातियुनि ते हमिलो छो न कयो। इंतशारी सियासत सबब पीटीआई पाण खे ई माइनस करे रही आहे। हिन क़िस्म जी सियासत नथी हली सघे। सिंध हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजिस हलफ खणी वरितो। सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत एडिशनल जजिस खे हलफ खणायो। जस्टिस मोहम्मद हुमायूं ख़ान, जस्टिस सुरेश कुमार ऐं जस्टिस शाहनवाज़ मेमण हलफ खयो। हलफ बरदारी जी तकरीब में जजिस ऐं सीनियर वकील शरीक थिया। आईजी सिंध जावेद आलम ओढो मीर रज़ा केस में पुलिस जी कोताहिन जो एतराफ़ करे वरितो। कराचीअ में सिंध बार काउंसिल जे तकरीब खे ख़िताब कंदे जावेद आलम ओढो चयो त मीर रज़ा जो क़तल अफ़सोसनाक आहे। केस में पुलिस खां कोताहियूं थियूं आहिनि। नई सिर जांच टीम केस ते कम करे रही आहे। मीर रज़ा जे वालदीन नई जांच ते एतमाद जो इज़हार कयो। केस में को बि दबाउ नाहे। ग़लति फ़हमीअ जो बुनियादु हुई। पुराणी जांच टीम ख़िलाफ़ कानून मूजिब कार्रवाई कई वेंदी।

पंजाब में पीपुल्स पार्टी कश्मोर के जिले नायब सदर समेत टे जणा कतल। पीपुल्स पार्टी कश्मोर जो नायब सदर आलमगीर कोश, संदस अजीज माशूक कोश ए नाजिम कोश पंजाब के इलाके दीनू शाह में हथियारबंद हथा कतल थी वया। वारसन जो चवण है आलमगीर कोश ए संदस साथिन पंजाब के अहमदपुर लम्हा थाने के हद बोही वाड़ में यासीन के घर में तरसल हुआ। हथियारबंदन हमलो करे कतल कर टिन्ही जवाबदार गिरफ्तार किया।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

0: जिक्र नहीं, कैसे कहे अब तुझको हमदम, उसी हंस दे ओ सानू अथरू देके।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज,
3: गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: दस तक देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल छुप छुप के फर्स्ट रमजान से रोजाना रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल हमराही 27 मार्च से जुम्मे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

غلام کیے بادشاہ

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।
3: बलोचिस्तान के इलाके सोराब में सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन है बारूदी मवाद जा धमाका 18 दहशतगर्द मारजी विया टे शहरी भी शहीद पाक फौज जा बच जवान जख्मी आईएसपीआर मूजिब बारूद से भरल गाड़ी को थो जै दौरान 8 दहशतगर्द मारजी विया केतरा ही जख्मी थे पिया बारूदी मवाद के धमाकन सबब इलाके में मौजूद टे शहरी भी शहीद थी विया फोर्सेस ए बलोची गडल से असरायती कार्रवाई दौरान 10 दहशतगर्दन के मारे गये शहीद फायरिंग की बहादुर जवान पिण जख्मी थी पिया दहशतगर्दी के खात्मे बारे मुहिम पूरी ताकत से जारी रखी वी।
4: सोलर बैटरी से डायरेक्ट हले।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
5: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
6: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 आवाज उधर रहो।
7: तहजीब मेहमान नवाज,
8: जिसकी फची पसी का साथ की आवाज,
7: जीए एफएम नेटवर्क इंड की आवाज।
6: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।

0: परवरिश देखिए हर पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो, छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टीअ जो मान वधाए।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद 91.7।
2: तो ये देखा है कि लड़कियों की जिस जगह शादी होती है उस घर को वो जन्नत बना दी।
3: जाओ जी सब तैयार, ये घर आना है शाहकार।

0: वो सास की चौकी पड़ी होगी और लोग कह रहे होंगे मरहुआ बहुत ही खबीस खातून थी।
1: प्यार परिंदा फड़ फड़ करके फुर से यूं उड़ जाए, जो कहते थे वाह वाह उनको अब कहते हैं।

0: GAFM की आवाज,
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
3: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
0: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: देखिए ड्रामा सीरियल एक भूल रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
3: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
4: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
3: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: मिर्जा की हीर देखिए 8 अप्रैल से हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज,
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: पाकन सबक इलाके में मौजूद जय शहरी भी शहीद थी गया। फोर्सेज आए बलोचिस्तान पुलिस पर क्लियरेंस ऑपरेशन कर सिक्योरिटी फोर्सेज की असरायती कार्रवाई दौरान वधीक ॾह दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। शदीद फायरिंग जी ॾे वठि दौरान ॿ बहादुर जवान पिण ज़ख़्मी थी पिया। दहशतगर्दीअ जे ख़ात्मे वारी मुहिम पूरी ताक़त सां जारी रखी वेंदी। अमरीका ऐं ईरान विच में जंगबंदी में 60 ॾींहनि जी वाद थी आहे या न जो तयारियां ताईं वाज़े न थी सघे। तुर्क ख़बरू इदारे मूजिब पाकिस्तान समेत 40 मुल्कनि जूं जंगबंदीअ वारी कोशिशनि सां अमरीका ऐं ईरान 60 ॾींहनि वारी जंगबंदी में वाद ते रास्पो ज़ाहिर करे छॾियो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि पाकिस्तान समेत 40 मुल्कनि खे बि आगाह कयो आहे। ईरानी उहिदेदार तरतीब कंदे चयो आहे त अमरीका सां जंगबंदी में वाद ते के बि ॻाल्हियूं नाहिनि थियूं। ईरानी सदन जो चवण आहे त माहिदे जो मुदो शुरू ई नाहे थियो त जंगबंदी में वाद ते ॻाल्हियूं कीअं थींदियूं। अमरीका माहिदे जे 48 कलाकनि खां पोइ भजकड़ी कई ऐं कुझु ॾींहनि खां पोइ माहिदे तां हथ खणी पियो हो। ऐं अॻूणे वॾे वज़ीर सैयद क़ाइम अली शाह जी धीउ प्रोफेसर निगत शाह जी रिटायरमेंट बाद 10 सालनि लाइ कॉन्ट्रेक्ट ते मुक़ररी। जिनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी जी JPMC फैकल्टी में ख़ुद शाह साम्हूं अची विया। फैसले ते नज़र सानी करण सीनारटी मेरिट ऐं अहलियत जो मयार बरक़रार रखण जो मुतालबो। ज़िला हाउस जे तर्जुमान जो चवण आहे त निगत शाह जी 10 सालनि लाइ मुक़ररी पॉलिसी फ्रेमवर्क ऐं PMDC तर्फ़ां जारी थियल गाइडलाइन तहत निज कॉन्ट्रेक्ट बुनियाद ते कई वई आहे।
4: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में हे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का सोना।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
6: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो,
1: मेरी जिंदगी है तू।
2: मेरी जिंदगी है तू, देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
3: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज,
3: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
3: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज,
3: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल मैं जमीन तू आसमान बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए नया 16 जनवरी से सिर्फ
1: सजी इनकी आवाज धरती
2: जिसे रची पसी है बन के मोहब्बत का सास जीए एफएम की आवाज
1: जीए एफएम नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती
2: जिसकी फजाओं में रची पसी है बन के मोहब्बत का सास जीए एफएम की आवाज
1: नेटवर्क।
3: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद सिंध जो आवाज।

0: तहजीब सजी
1: जिसकी फिल्म मोहब्बत का सास जिसकी आवाज
0: GAFM नेक्स्ट सिंध की आवाज तहजीब सकाफत से सजी धरती
1: गाँव में रची बसी है बदका सास FM की आवाज
0: GAFM नेटवर्क सिंध
2: हक गीत संगीत जो जीए हैदराबाद मटियारी FM 91 सिंध जो आवाज सच जो आवाज गीत मटियारी 8.6 सिंध जो आवाज
3: हाथ बैठे हैं

0: सिंध की मेहमान नवाज धरती,
1: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
0: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: जंग बदी में वाद ते गालियों किने थिंदी अमेरिका मुआदे के 48 कलाकन का भंजकड़ी कई कुछ डी मुआदे हथ खी वो

0: कंट्रोल आहे. माण्हू अमरीकी बैरिया जी नाकाबंदी खे लोह जी भित कोठे रहिया आहिनि. ईरान इन लोही भित खे कुझ बि नथो करे सघे. पासान इनकलाब खे बि ख़तम करे छॾियो. हाणे उहे फरार थी रहिया आहिनि. ईरानी क़यादत बि बेयकीनी जो शिकार आहे. अमरीकी सदर जी नई दावा साम्हूं अची वई. ट्रंप चयो आहे त ईरान वटि कूड़ियुनि ख़बरुनि खां सवाइ कुझ बि नाहे. महांगाई जी शरह 300% आहे. हालत अञा बि बदतर थींदी.
1: पाकिस्तान में मुक़रर ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी जी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सां मुलाक़ात. बेतरफ़न लाॻापन समेत खिते जी मौजूदा सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि. ॿिन्ही अॻवाननि जो खिते जी सूरतहाल ते राब्तनि में रहण ते बि इतफ़ाक़. इसहाक़ डार जो चवणु हो त पाकिस्तान खिते जी अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ कोशिशूं जारी रखंदो.
0: बेड़े ते हुसियन जे हमले में टे पाकिस्तानियुनि जे शहीद थियण जी तस्दीक करे छॾी. नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पारां हमले जी मुज़म्मत. परॾेही तर्जुमान चयो आहे त पाकिस्तान सऊदी क़यादत में बहिरी सलामती लाइ क़ाइम बहिरी इतिहाद जो हिसो आहे. सप्लाई चेन ऐं बहिरी सफ़र जे तहफ़ुज़ लाइ इतिहाद जे पधरनामे ते अमल करण लाइ सरकार लाइ तयार आहे. मका दिफ़ाई माहिदो वाज़े आहे. हिक मुल्क खे हमले ते टिन्ही मुल्कनि ते हमिलो समझियो वेंदो. मका माहिदे तहत खिते जी सलामती ऐं अमन लाइ कोशिशूं जारी रखियूं वेंदियूं. माहिदो अमन ऐं सलामती बाबति रुगो टिन मुल्कनि ताईं महदूद आहे. खिते में अमन वारियूं कोशिशूं बि जारी आहिनि.
1: आबनाए हुरमस ते ओमान ऐं ईरान मुआदे जे वेझो आहिनि. मुआदे लाइ मतन तयार कयो पियो वञे. कतरी परडेही तर्जुमान जी दावा. कतर जे परडेही तर्जुमान जो चवणु हो त ट्रैकड़ी कंदड़ मुल्क खिते में जंग जे खात्मे लाइ पुरमेद आहिनि. कोशिशुनि जा मुस्बत नतीजा साम्हूं अचण शुरू थी विया आहिनि.

बलूचिस्तान जे इलाइक़े सोराब में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन ऐं बारूदी मवाद जा धमाका, अड़े दहशतगर्द मारिजी विया, टे शहरी बि शहीद। पाक फ़ौज जा ॿ जवान ज़ख़्मी। ISPR मूजिब बारूद सां भरियल गाॾी तयार करण दौरान ज़ोरदार धमाको थियो, जंहिं दौरान 8 दहशतगर्द मारिजी विया ऐं केतिरा ई ज़ख़्मी थी पिया। बारूदी मवाद जे धमाकनि सबब इलाइक़े में मौजूद टे शहरी बि शहीद थी विया। फोर्सिस ऐं बलूचिस्तान पुलिस पहुची गॾियल क्लीयरेंस ऑपरेशन कयो। सिक्योरिटी फोर्सिस जे सराइती कार्रवाई दौरान वधीक 10 दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। शदीद फायरिंग जी ॾे वठि दौरान ॿ बहादुर जवान पिण ज़ख़्मी थी पिया। दहशतगर्दी जे ख़ात्मे वारी मुहिम पूरी ताक़त सां जारी रखी वेंदी।

0: वज़ीर आज़म पहिरीं यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीअ जो ऐलान करे छॾियो। शहबाज शरीफ चयो आहे त पॉलिसी तहत समूरी लेबर फोर्स में औरतुनि लाइ 35% कोटा हूंदी। हर साल स्टार्ट अप्स लाइ 10% कोटा मुख़्तस कई वेंदी। नौजवाननि जे आलमी ॾींहं ते तकरीब खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म चयो त अशराफ़िया जे ॿारनि खे तालीम जूं बहितरीन सहूलियतूं मिलियूं वेंदियूं आहिनि। ग़रीब शागिर्दियाणियुनि खे तालीम जे मैदान में अॻिते आंदो पियो वञे। चाहियूं था त ॿियनि मुल्कनि जे मुक़ाबले में पोइते न रहूं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुन FM 91.6।

0: मेहमान नवाज धरती,
1: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
0: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: जिसकी रची बसी है बन के मोहब्बत का सास जीए वास
1: जीए FM नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: सच जो आवाज गीत संगीत FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल फासले बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
0: आप सुन रहे थे
3: हालत यहाँ भी पत्थर थी थी अमेरिका ऐं ईरान सठ ॾींहनि जी जंगबंदीअ ते इतफ़ा करे वरितो। तुर्क मीडिया जी दावा, ईरानी जंगबंदीअ वारनि कोशिशुनि सां अमेरिका ऐं ईरान सठ ॾींहनि वारी जंगबंदीअ में वाद ते रास्तो ज़ाहिर करे छॾियो। ॿिन्ही मुल्कनि पाकिस्तान समेत ट्रैकड़ी कंदड़ मुल्कनि खे बि कंदे चयो त अमेरिका ॻाल्हियूं न आहे थियो त जंगबंदीअ में वाद ते ॻाल्हियूं कीअं थींदियूं। अमेरिका मुआदे जे 48 कलाकनि पाकिस्तान में मुक़रर ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी जे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सां मुलाक़ात। ॿिनि तरफ़ लाॻापन समेत ख़िते जी सूरतयाल ते ॻाल्हियूं। ॿिन्ही अॻवाननि जो ख़िते जी सूरतयाल ते राब्तनि में रहण ते इतफ़ाक़। इसहाक़ डार चयो आहे त पाकिस्तान ख़िते जे अमन ऐं इस्तक़ाम लाइ कोशिशूं जारी रखंदो। पाकिस्तान रेड सी में बहरी बेड़े ते होसन जे हमले में टे पाकिस्तान जी तादम सऊदी क़यादत में कायम। सप्लाई चेन ऐं बहरी सलाह इतिहाद जे पधरनामे ते अमल करण लाइ सहकार लाइ तयार आहियूं। मका दिफ़ाई मुआदो वाज़े आहे, हिक मुल्क खे हमले ते टिन्ही मुल्कनि ते हमिलो सम्झो वेंदो। मका मुआदे तहत किथे जी सलामती ऐं अमन लाइ कोशिश वेंदियूं, रुगो टिन मुल्कनि ते महदूद न आहे, किथे में अमन वारियूं कोशिशूं बि जारी आहिनि। आपने मुसलमान ऐं ईरान वाहिद माहिदे लाइ मतन तयार कयो पियो वञे। कतरी परे तर्जुमान जी दावा, कतर जे परे तर्जुमान जो चवण आहे त 40 मुल्क खिते में जंग जे ख़ात्मे लाइ पूरो उमीद आहिनि। कोशिशनि जा मस्बत नतीजा साम्हूं अचण शुरू थी विया आहिनि।
4: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहिरीं यूथ एम्प्लॉयमेंट आज़म चयो त पॉलिसी तहत स्टार्ट अप्स लाइ 10% कोटा मुख़्तस कई वेंदी। नौजवाननि जे आलमी ॾिहाड़े ते तक़रीब खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म जो चवण हो त अशराफ़िया जे ॿारनि खे तालीम जूं बहितरीन सहूलियतूं मिली वेंदियूं। ग़रीब शागिर्दयाणनि खे तालीम जे मैदान में अॻिते आंदो पियो वञे। चाहियूं था त ॿियनि मुल्कनि जे मुक़ाबले में पोइते न रहिजी वञे।
3: हिन वक़्त मुल्क में नवनि सूबनि जे आहे इस्लामाबाद कंदे वफ़द इज़त थींदी आहे। गटर में किरी ॿार जे 14 सूबनि खे सबूरियत खे मिली वेंदी। ताईं फंड पाकिस्तान मुल्कनि खां वॾा आहिनि। जॾहिं पाकिस्तान जी आबादी सूबा हुआ, आबादी 26 करोड़ आहे, पोइ बि 4 सूबा आहिनि।
4: आईजी सिंध जावेद आलम ओडो मीर रज़ा केस में पुलिस जी कोताहिनि जो एतराफ़ करे वरितो। कराचीअ में सिंध बार काउंसिल जे तक़रीब खे ख़िताब कंदे जावेद आलम ओडो चयो त मीर रज़ा जो कत्ल नई जांच करे पई। मीर रज़ा जनीअ जो बुनियाद हुई।
3: अॻोणे वरी वज़ीर जिनाह सिंध वज़ीर JPMC फैकल्टी में मेरिट ऐं टिन सालनि लाइ मुक़ररी पॉलिसी फ्रेमवर्क ऐं BMDC तरफ़ां जारी थियल गाइडलाइन तहत निज कॉन्ट्रेक्ट बुनियाद ते कई वई आहे।
5: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।